गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। 8 बज के उस पार आप सभी का वेलकम करते हुए ऑन द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7। मैं यहाँ पे अंतरा आपके साथ एंड यस आई एम टेकिंग यू थ्रू विद ऑल द न्यूज व्हिच इज एंड व्हाट हैपेंड अक्रॉस द ग्लोब। अब जरा सिंगापुर से बाहर निकलते हैं, लेट्स लुक एट What's happening around our region, because there is one word जो सिंगापुर में सुनते ही हम थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं, जो कि है haze, that's right. So Indonesia is once again battling major forest and peatland fires, and authorities जो है उन्होंने arrest की है 72 people suspected of starting some of these fires. Investigations जो है वो on है in 89 forest and land fire cases across Borneo and Sumatra, and authorities जो है suspect कर रहे हैं that many of these fires were deliberately started, largely because land clear करने के लिए ये पर तरीका पड़ता है। और प्रॉब्लम सिर्फ फायर्स की नहीं है, वेदर भी बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। ड्राई कंडीशंस अलोंग विद इंटेंसिफाइंग एल नीनो पैटर्न आर मेकिंग दीस फायर्स इजीयर टू स्प्रेड एंड मच हार्डर टू कंट्रोल। इनफैक्ट नियरली 95,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड रिपोर्टेडली बर्न्ड इन जुलाई अलोन, सो दैट्स ऑलमोस्ट डबल द एरिया अफेक्टेड ड्यूरिंग द एंटायर फर्स्ट 6 months ऑफ दिस ईयर। अब हम सिंगापुर में इसकी बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली स्मोक जो है उसको पासपोर्ट या बॉर्डर कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती है। द हेज has already traveled into Malaysia because particularly Sarawak mein, where air quality became bad enough for hundreds of schools to close. And obviously jab hum sunte hain ki Indonesia mein fires Malaysia tak haze pahunch gaya hai, so Singapore mein agla sawal yahi hai ki hamare yahan par bhi to aayega hi aayega. But abhi panic karne ki koi zarurat nahi hai. This doesn't mean ki kal subah uthte hi Singapore mein hame haze jo hai gayab mil jayega. It simply means that this is one regional story worth keeping an eye on, especially because we have seen transboundary haze effect jo Singapore mein humne pehle dekha hua hai. Meanwhile, Indonesia jo hai is trying to control the fires through firefighting operations, including water bombing and cloud seeding, while investigation into those responsible still continue. So well, Eyes on Indonesia, eyes on the skies, and hopefully Singapore ki hawa bilkul aisi hi rahe hamare hisab se. Well, Radio Basti 24/7 alive, par filhal badhte hain aage. Let's go for a musical break, and on the morning show I will be right back with the next news. 8:06 by the studio clock. Good morning.

0: सुबह का असली वेक अप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24/7।
1: मैं बताती हूँ मेरी नींद किसने चुराई। रेडियो मस्ती 24/7, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, दिस इज द मॉर्निंग शो। 8:00 हो चुके हैं 19 मिनट, एंड व्हाइल आई गिव यू ऑल द खबर्स एंड अपडेट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब, भाई इस हफ्ते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो आने वाला है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रक्षाबंधन, एंड इसी बात ने मेरी नींद चुरा रखी है कि हॉलीडे तो हो गया अंसरा, लेकिन ये जो तुमने राखी नहीं खरीदी है और जो तुमको भेजनी हुई है वो उसका क्या करोगे? एंड I am not stressed out, to be very honest, because I know what I have to do. And I think most of the people here in Singapore, we all know what to do, where to go, how to go about it. Aapki Rakhi ki shopping ho gayi? Because if not, so this place is for all of us. Although honestly, isme koi puchne wali baat hi nahi hai. Jyoti Stores and Flower Shop, 1 Campbell Lane. We all know this. We have been knowing. It is just there for us all the time. I mean, Jyoti Stores ko Singapore mein introduce karane ki koi zarurat

0: ही नहीं है, इट हैज बीन देयर अराउंड फॉर एजेस. एंड एटलीस्ट फॉर मी ज्योति स्टोर्स इज वन ऑफ दोस प्लेसेस जहां पे यू नो आई जस्ट एंटर की बस एक चीज लेनी है एंड आई समहाउ अंदर जाके याद आता है ये भी चाहिए, ओ दिस इज ऑल्सो नाइस, ये भी चाहिए. अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई हाउस व्हेन इट कम्स टू फेस्टिवल्स. इनफैक्ट मेरे घर का जो छोटा सा मंदिर भी है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम दैट शॉप ज्योति स्टोर्स. स्पेशली नाउ रक्षाबंधन जो है वो आने वाला है 28 अगस्त को, सो ऑफकोर्स यू गॉट गो देयर. अगर अभी तक आपने अपनी राखियां नहीं ली है तो उनके राखी कलेक्शन को बिल्कुल चेकआउट करिए, गेट योर फेस्टिव शॉपिंग सॉर्टेड. एंड व्हाइल यू आर देयर घर की भी जो छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स है ना, जस्ट हैव अ लुक अराउंड, किचन का स्टफ, हाउस होल्ड थिंग्स, पूजा के एसेंशियल्स, फेस्टिवल्स के सप्लाईज, फ्लावर्स एंड एवरीथिंग. एंड माई पर्सनल फेवरेट भाई किचन अप्लायंस के रिपेयर्स के लिए भी यस दिस इज योर गो टू प्लेस. ब्लेंडर ने एक दिन सडनली काम करना बंद कर दिया या फिर आपके प्रेशर कुकर को कुछ हो गया है, आई थिंक मेरा तो भाई ज्योति ले जाओ, वहां पे सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा. दैट्स द ब्यूटी ऑफ प्लेसेस लाइक ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप. यू डोंट नीड 10 डिफरेंट स्टॉप्स, यू जस्ट डोंट नीड 10 डिफरेंट गूगल सर्चेस. एक शॉप पे जाइए, वहां पे सब कुछ साथ साथ पाइए. एंड देयर समथिंग क्वाइट कम्फर्टिंग अबाउट वॉकिंग इन टू द स्टोर दैट्स बीन अ पार्ट ऑफ सिंगापुर लिटिल इंडिया का लैंडस्केप फॉर सो मेनी ईयर्स, सो यू प्रीटी मच नो कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा. सो दिस वीक स्पेशली इफ राखी शॉपिंग आपकी अभी भी पेंडिंग है, मेक दैट ट्रिप ज्योति स्टोर एंड फ्लावर शॉप, 1 Campbell Lane, लिटिल इंडिया में. एंड या राखी लेने जाओ और मेरी तरह 4 और काम याद करके वापस आओ. इसी के साथ फिलहाल बढ़ते हैं आगे. ये राखी वाला गाना तो डेफिनेटली इतनी सारी बातों के बाद बनता है. फिलहाल के लिए लेट्स गो.
1: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना.
2: भाई की डन है मम्मा.
3: ड्यूटी
4: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
3: मैं उठता था.
1: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं. इस रक्षाबंधन इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, 1 Campbell Lane. राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति.

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: बहुत ही अंडररेटेड गाना है ये, व्हाट अ ब्यूटीफुल वन। ऑन अ मंडे मॉर्निंग 8:37 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। इट्स टाइम फॉर अ ट्रैफिक अपडेट ऑन द मॉर्निंग शो। वेकअप ब्रेकडाउन आपको इस वक्त मिलेगा ऑन टीपीई टुवर्ड्स एसएलई आफ्टर केपीई। हैवी ट्रैफिक की खबर आने वाली टुवर्ड्स एमसीई एट जुरोंग टाउन हॉल रोड एग्जिट, और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन पीआईई टुवर्ड्स टुअर्स एट एवाई एग्जिट। वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। लेट्स मूव ऑन, अमित त्रिवेदी विद क्वीन एंड जुगनी। लेट्स गो फॉर इट। गुड मॉर्निंग।

0: मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 न्यूज व्यूज एंड अ पिंच मस्ती.
1: That's right, it's the morning show, but आज रेनुका नहीं आंद्रा के साथ. आप मॉर्निंग शो का ये सफर बिल्कुल तय कर चुके हैं, राइट फ्रॉम 7 AM एंटिल 10 AM. वेल 8:42 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में रेडियो मस्ती 24/7 पर. इट्स टाइम फॉर सम स्पोर्ट्स की खबर. वेल अनफॉर्चुनेटली दिस वन कम्स विद अ लिटिल हार्ट ब्रेक फॉर टीम इंडिया. इंडिया की विमेन जो है दे हैव मिस्ड आउट ऑन अ प्लेस ऑन द हॉकी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल्स आफ्टर अ 0-0 ड्रॉ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. एंड ये वो मैच था जहां पे इक्वेशन काफी जो है एक्चुअली सिंपल थी. इंडिया हैड टू विन. अ ड्रॉ वाज इनफ फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड अनफॉर्चुनेटली वही हुआ. इंडिया केप पुशिंग स्पेशली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द गेम. चांसेस भी आए, पेनल्टी कॉर्नर भी मिला. टुवर्ड्स द एंड दे इवन टुक देयर गोल कीपर ऑफ टू पुट अनदर प्लेयर फॉरवर्ड बिकॉज अब करना है तो गोल ही करना है, राइट. बट दैट वन विनिंग गोल जस्ट वुडंट कम. सो फाइनल विसल जब हुआ सो इंडिया 0 ऑस्ट्रेलिया 0. एंड पता नहीं मेरे दिमाग पे अभी चगदे का सीन क्यों चल रहा है. बट वेल कमिंग बैक टू रियलिटी एंड हियर्स वेयर इट गेट्स इवन मोर पेनफुल. बोथ टीम्स फिनिश्ड विद द सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड द सेम गोल डिफरेंस. ऑस्ट्रेलिया वेंट थ्रू सिंपली बिकॉज दे हैड स्कोर्ड मोर गोल्स ओवरऑल एंड बस इतना सा मार्जिन. So that's sport for you. Kabhi ek goal, ek point, ek second, pura tournament ko decide kar deta hai. But India's World Cup isn't completely over yet. They'll now play for the 5th place finish karne ke liye. Yes, that's coming straight from the hockey grounds. So semi-final ka dream to unfortunately yehi khatm ho jata hai for the Indian women's team. But there's still something to play for. So yes, come on girls. With that, let's move on and dekhte hain ki aage aage aur kitni headlines jo hai which are waiting for us this morning on The Morning Show on Radio Masti 24/7 Live.

0: सुबह का असली वेक अप कॉल द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24/7।
1: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव में अंतराप के साथ दिस इज द मॉर्निंग शो एंड टेल मी इफ दिस हैज हैपेंड टू यू कि आपको कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए बट उससे पहले आपको ये फिगर आउट करना जरूरी होता है कि इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में मिलेगी कहां से, कौन सी एजेंसी, कौन सी वेबसाइट, कौन सा पेज। वेल, सिंगापुर इज नाउ बीटा टेस्टिंग समथिंग दैट कुड मेक दिस होल प्रोसेस अ लिटिल इजियर। सो chat.gov.sg जो है अ न्यू गवर्नमेंट AI चैटबॉट जहां पर यू कैन सिंपली आस्क योर क्वेश्चंस इन एवरीडे लैंग्वेज एंड इट विल फाइंड द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू फ्रॉम ऑफिशियल गवर्नमेंट के सोर्सेज एंड यू कैन ask in any Singapore's four official languages, English, Mandarin, Malay, ya fir Tamil. Now the chatbot has actually been beta testing since July 3rd and idea thoda sa simple sa hi hai. Instead of you jumping from one government website to another, ek jagah par aap sawal pooch lijiye and wahi par answer bhi aapko mil jayega. The answers are pulled from the official government websites and importantly it also gives you the source link so that you can check the information yourself. Now before we all ki bhai बस अब गवर्नमेंट ऑफिसर भी एआई ही हो गया भाई, सब कुछ एआई में ही हो रहा है एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो Jovitech and Public Service Division, they have specifically said that this is not replacing helplines for actual officers. The chatbot is meant more for those everyday common questions. If your situation is complicated or personal, tab aapko of course face-to-face jo hai baat karni padegi. And on privacy, the government says conversations remains within government systems and AI tools used don't retain your chat history or use it for their training. So basically, government information plus AI plus hopefully less of website hunting. So it's still being tested, so we'll see how well it works in real world as well. But Singapore adding AI to public services, I don't think so, not surprising at all. चलिए फिलहाल ये टेक न्यूज से आगे बढ़ते हैं और आपको बाकी खबरें भी जरूर देंगे बट रैपिंग अप दिस आवर विद दिस अमेजिंग धुरंधर बिल्कुल गाना।

0: साला।
1: सुबह का असली वेक अप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24/7।
2: 9:16 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, रेडियो मस्ती 24/7 में अल्ट्रा के साथ, एंड यहाँ पर चल रहा है द मॉर्निंग शो। एंड यस्टरडे इंडिया ने सेलिब्रेट किया नेशनल स्पेस डे, एंड ऑफ कोर्स द डेट टेक्स अस स्ट्रेट बैक टू चंद्रयान 3 एंड द इनक्रेडिबल मोमेंट इन 2023 जब इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून एंड द फर्स्ट टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोलर रीजन। बट हियर्स व्हाट आई फाउंड फैसिनेटिंग व्हाइल रीडिंग अबाउट नेशनल स्पेस डे इस साल में, कि मून पे पहुंच गए बट अपेरेंटली इंडिया इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, बिकॉज लुक एट व्हाट्स ऑन द रोड मैप। देयर इज गगनयान, इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, देन इंडिया इज वर्किंग टुवर्ड्स इट्स ओन स्पेस स्टेशन, द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। द फर्स्ट मॉड्यूल इज टारगेटेड फॉर 2028 विद द फुल 5 मॉड्यूल स्टेशन प्लान बाय 2035, एंड 2028 में एक और बड़ा मिशन प्लान किया जा रहा है, वीनस। इंडियाज वीनस ऑर्बिटर मिशन इज टारगेटेड फॉर 2028 टू स्टडी एवरीथिंग from the planet's atmosphere to surface to subsurface. मतलब अभी मून हो गया, अब वीनस की बारी है। बट स्पेस एक्सप्लोरेशन इज ओनली हाफ ऑफ द स्टोरी। इंडिया का स्पेस इकोनॉमी इज करंटली अराउंड 8 to 9 billion US dollars, एंड द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स इट कुड ग्रो टू रफली 40 to 45 billion dollars ओवर द नेक्स्ट डेकेड। एंड हियर इज अ नंबर दैट रियली शोज हाउ क्विकली थिंग्स आर चेंजिंग। 2026 की शुरुआत में इंडिया हैड अराउंड 400 रजिस्टर्ड स्पेस स्टार्टअप्स, एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर हैड crossed 618 million US dollars by March 2026. So when we say India ka space story, ab wo sirf ISRO aur rocket launch ki story nahi hai, it's becoming an entire ecosystem. Startups hai, private companies hai, satellites, launch technologies, human space flight, planetary exploration. And eventually, India wants to put an Indian astronaut on moon by 2040. Ab wo din dekhna definitely bucket list mein zarur hai. From Chandrayaan to Gaganyaan, from our own space station to Venus. Space mein abhi picture baki hai, mere dost. Chaliye, filhal, let's get back down to Earth. And what else is making news this morning? We will get to know. But saath saath mein gaane chalte rehne chahiye. Coming up is one of my very, very favorite Arijit Singh tracks from the movie Love Aajkal, just for you on Radio Masti 24/7. Good morning.

0: serious headlines with a not so serious vibe. Only on The Morning Show on Radio Masti 24/7.
1: Yes, it's the morning show and you are asking कि भाई how does she do that? मैंने ये लाइन काफी अपने लिए तो सुन रखी है. In fact, but I am not going to talk about myself. 9:29 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में. Radio Masti 24/7. This is the morning show. That is right. But I am talking about the kind of magic and the kind of unbelievable things Suhani Shah does. And yes, she is coming to Singapore. Watching her life, it is going to be just amazing, right? Have you got your tickets yet? Because seriously, बाद में ये मत कहिएगा कि अंतरा tickets नहीं मिली. मैं अभी से आपको बता रही हूँ. So Suhani Shah is coming live to Singapore with Spellbound, and yes, you are going to be spellbound after you watch what she does. It is क्रेजी, मतलब इम्पॉसिबल सा ही लगता है. अगर आपने उनके ऑनलाइन वीडियोस वगैरह कभी देखे होंगे कि भाई ये कैसे किया, इसको कैसे पता चला. इमेजिन सिटिंग राइट देयर व्हाइल शी इज डूइंग इट लाइव इन फ्रंट ऑफ यू. माइंड रीडिंग, साइकोलॉजी, ह्यूमर, मैजिक, ऑडियंस इंटरेक्शन, बेसिकली एक एंटायर शाम जहां पे आपका दिमाग जो है इट्स गोइंग टू स्पेंड हाफ द टाइम सेइंग हाउ. How did she do that? And Singapore tickets are already live. Plus, right now, there are some special reduced prices. Limited time ke liye jo chal rahe hain. So, this is actually the time to book. Not ki, haan, chalo, theek hai, weekend mein dekha jayega. Bhai, abhi book kar lo, set kar lo, so that you are rest assured. Because, ye jo hai. I saw this one episode when Suhani Shah was sitting with these news anchors. And, वही लाइव उस टीवी शो में बंदे का मोबाइल ओपन कर दिया उसका पासवर्ड गेस करके. आई डोंट नो हाउ डिड शी डू दैट. इवन द प्रेजेंटर्स हु वर सिटिंग ओवर देयर दे वर लाइक वेट व्हाट हाउ. आई मीन एंड यू नो दीज आर द थिंग्स विच वाज लाइक हैपनिंग राइट इन फ्रंट. पता नहीं कैसे करती है बट कर लेती है. 20th ऑफ सितंबर, दैट्स व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन. गो एक्सपीरियंस दिस लाइव. 6 PM क्रेटा एयर पीपल्स थिएटर में होने वाला है. इट्स गोइंग टू बी होस्टेड इन इंग्लिश. स्पेल बाउंड Suhani Shah लाइव इन सिंगापुर. ब्रॉट टू यू बाय वंडरफुल एस्केपेड्स एंड एपिक एनकाउंटर्स. टिकट्स जो है अवेलेबल है सिस्टिक में. सो बुक देम, लॉक द डेट एंड बस एक काम करना, अपने थॉट्स जो है वो थोड़े से संभाल के ले जाना, बिकॉज अपेरेंटली Suhani माइट गेट देयर बिफोर यू डू. यस, गो ग्रैब दोस टिकट्स राइट अवे.
2: Aamir Khan wondered.
3: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
2: Salman Khan wanted answers.
4: Kaise kiya ye?
2: R. Madhavan said.
5: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
2: And Boman Irani?
6: I say this with great respect. This is actually, it's blown my mind.
2: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है Suhani Shah ये कमाल?
7: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
2: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 PM, Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
8: How do you know these things? Stop reading my mind!

0: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है?
1: तुमको लेकर
0: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
2: मुझे जान पहले चलो,
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट
2: 9:43 हो चुके हैं। स्टूडियो क्लॉक में रेडियो मस्ती 24/7 में अंतर आपके साथ। टाइम फॉर इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन PIE टुवर्ड्स अचांगी एट अपर सिरंगुन रोड एग्जिट। रोड वर्क्स की खबर है ऑन बुकेटमा रोड टुवर्ड्स सिटी आफ्टर CTE, अवॉइड करें लेन नंबर 1। और रोड वर्क्स की खबर है ऑन TPE टुवर्ड्स SLE एट लोयांग एवेन्यू एंट्रेंस। सो वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। कमिंग अप नेक्स्ट इज समथिंग सेइंग ओ मामा Tetema. Nay, gana suniye, it's not that bad. Good morning.

0: मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 न्यूज व्यूज एंड अ पिंच मस्ती।
1: आइए चलिए एक खबर इंडिया से भी हो जाए। रेडियो मस्ती 24/7 में अंतर आपके साथ यहाँ पे चल रहा है द मॉर्निंग शो। एंड यस भाई, सितंबर 1st 2026 से इंटरनेशनल पैसेंजर्स डिपार्टिंग फ्रॉम इंडिया के एयरपोर्ट्स विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक फिजिकल बोर्डिंग पास इमिग्रेशन में स्टैंपिंग के लिए। सो बेसिकली अब वहां से दे कैन सिंपली शो द ई बोर्डिंग पास अपने फोन पर एट द इमिग्रेशन काउंटर। एंड जस्ट टू क्लारिफाई, बिकॉज हेडलाइंस कैन मेक द साउंड अ लिटिल कंफ्यूजिंग, पेपर बोर्डिंग पासेस जो है वो बैन नहीं हुए हैं। अगर आप फिजिकल बोर्डिंग पास लेकर जाना प्रेफर करते हैं तो फिर दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, इमिग्रेशन विल स्टिल एक्सेप्ट इट, दे जस्ट वोंट स्टैम्प इट एनी मोर। दिस चेंज विल अप्लाई अक्रॉस ऑल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। अपेरेंटली देयर वाज अ वेरी प्रैक्टिकल रीजन बिहाइंड इट टू। द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन फाउंड दैट द स्टैम्पिंग प्रोसेस वाज कॉजिंग अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस एंड देयर वर टू many instances जहां पे incorrectly या improperly placed stamps जो है made boarding passes difficult to read. So basically they said ठीक है stamp ही हटा दो। The CISF had already stopped stamping boarding passes during security checks कई साल पहले, so now immigration is getting rid of its boarding pass का stamp as well. But that does not mean immigration clearance is going anywhere away. Airport check-in, security, screening, passport and immigration formalities, everything remains. You are simply removing one physical paper and stamp ka steps from the process, and India may eventually go even further. The Bureau of Immigration jo hai reportedly is also working on a pilot project looking at doing away with the physical entry and exit stamps in passport for Indian nationals, but that's a separate development and not part of the September 1st wala change as yet. So abhi ke liye September 1st se, yeah, whoever is flying with the Indian passport internationally from India, e-boarding pass aapke phone pe immigration jo hai bilkul accept karega. So well, that was that from all the way hamare Bharat desh se. And filhal wahi isse bani ek khoobsurat movie ka khoobsurat gana aapke liye hazir on the morning show on Radio Masi 24/7. Good morning.

वेल, रेडियो मस्ती 24/7 अंतरा आपके साथ थी आज की ये सुबह, मंडे मॉर्निंग. यस, ऑन द मॉर्निंग शो. एंड यस, वी आर डन फॉर दिस मंडे मॉर्निंग. नेशनल, इंटरनेशनल, सिंगापुर, स्पोर्ट्स, टेक, थोड़ा स्पेस, थोड़ा ट्रैवल, थोड़ा बहुत दुनिया भर की टेंशन भी. बेसिकली मंडे मॉर्निंग न्यूज पेपर ऑन रेडियो हैज ऑफिशियली बीन रेड. एंड यू नो वॉट, आई स्टार्टेड माई मॉर्निंग टेलिंग यू दैट आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम अ हॉलीडे. एंड समवेयर बिटवीन ये सारी कहानियां, आई थिंक माई ब्रेन has finally started receiving the actual message. Antara, chutti khatam, you are back. But I'm coming back happy for sure, because sometimes that little break from routine is exactly what you need to realize ki haan, life hectic hai, kaam bhi bahut hai, Monday to Monday hi rahega, but you can still come back to all of it feeling a little lighter. So if your Monday has started with 2700 emails, 3 deadlines, and somebody already asking ki bhai, any update on this, one thing at a time. Coffee uthao, chai uthao, whichever you prefer. Playlist lagao. Radio Masti 24/7 aapke saath hai. Masti Media 24/7, by the way, app name ke saath on the App Store now. If you haven't checked it out, yes, that's the change should look out for. And get on with it. You are officially now caught up with what's happening around you. Mera kaam yahan par khatam. This is me, Antra, signing off from the morning show. Filhaal ke liye. Have yourself a fabulous Monday, a productive week, but beech mein थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकाल लेना, दैट्स फॉर श्योर. वेल, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे इनफॉर्मड, एंड आई विल कैच अप विद यू वेरी वेरी सून. अब तो मैं जब आ गई हूं तो हमारी मुलाकातें तो यूं ही चलती रहेगी. बाय बाय, टेक केयर, एंड यस, हैव अ ग्रेट डे अहेड.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ट्यूटर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: मेरे करण अर्जुन आएंगे
0: ना, करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हेलो, हाय, वेलकम। घड़ी ने बिल्कुल वक्त पर अपना वक्त बचाया है। ऑनेस्टली दिन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो अब शुरू हुआ है, द फेज आई लव द मोस्ट। सुबह तक ना हम सब बड़े सिंसियर होते हैं, इनफैक्ट रहते भी हैं। काम करना है, प्रोडक्टिव रहना है, मंडे को प्रॉपरली स्टार्ट करना है, एंजॉय करना है, फिर लंच होता है और लंच के बाद दिमाग जो है क्वाइटली कहता है बस 6 बजे तक somehow मुझे पंच आउट करके निकलना है। किसी तरह घड़ी के 6 बज जाए, मुझे घर जाना है। Hi, welcome back। आपको घर जाने की जल्दी होगी पर मुझे तो आने की जल्दी थी। This is me, Radio Masti 24/7 Live पर आपके साथ आपकी प्यारी होस्ट एंड दोस्त मुग्धा। शुरू हो चुका है मेरा शो मस्ती हैंगआउट। सिंगापुर में अगर आप अब भी ऑफिस डेस्क पर हो तो एक बार ना ये क्लॉक जरूर जो है देख लेना, चेक कर लो। अगर कम्यूट कर रहे हो या शायद सोच रहे हो घर पहुंचने के पहले क्या करें क्या ना करें, और अगर घर से जो है काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, एक्चुअली बहुत सारे लोग करें, बीइंग ऑनेस्ट मुझे बहुत पसंद है, आप बहुत लकी हो। लेकिन मंडे को 6 बजे तक खींचने की ना कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगले 3 घंटे मैं आपके साथ हूँ। म्यूजिक है, मस्ती है, बक बक है, बेबाक बक बक होने वाली है, और बीच बीच में वो जरा जरा सी बातें जो मंडे को थोड़ा और लेस मंडे बनाएंगे। आज इंटरनेशनल स्ट्रेंज म्यूजिक डे है। ये कौन सा म्यूजिक होता है? स्ट्रेंजर थिंग्स तो पता था, स्ट्रेंज म्यूजिक भी होता है, कोई बात नहीं। आज जो है प्लेलिस्ट में थोड़े वियर्ड अनएक्सपेक्टेड गाने जो है उठा लेना और मान लेना कि आज स्ट्रेंज म्यूजिक डे है। मैं हूं मुग्धा, शुरू करते हैं आज का शो। दिस इज मंडे। यस, स्टे कनेक्टेड।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ के आपका पहला रिएक्शन क्या होता है, वेट व्हाट, है ना? एग्जैक्टली यही हुआ मेरे साथ। हम अक्सर सुनते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को लेकर इतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं कि लगता है अरे भाई कितना प्रोटेक्टिव हो, बच्चे जरा सा थक जाए तो पानी चाहिए, खाना चाहिए, बैठने सब तैयार, लगता है चलने दो थोड़ा। लेकिन जापान से एक खबर ऐसी आई जिसने मुझे जेन्युइनली बहुत हैरान कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। माउंट फूजी पर एक पिता अपने दो बेटों के साथ चढ़ाई कर रहे थे। छोटा बेटा सिर्फ 7 साल का था और करीब 2000 मीटर की ऊंचाई पर उसने अपने पापा से कहा कि मैं थक गया हूँ। अब आप सोचेंगे डैड ने क्या किया होगा, रुक गए होंगे, बच्चे को लेकर वापस नीचे आए होंगे, उसे अपने कंधों पे उठाया होगा, एनी हाउ मैनेज करके बच्चे को सपोर्ट करके थकान कम करके वापस ले आए। नहीं, नो, बोल्ड लेटर्स में पिता ने उस 7 साल के बच्चे को कहा वेट हियर ऊपर माउंट फूजी पे और अपने दूसरे बेटे के साथ आगे चढ़ते रहे। बच्चा करीब 8 घंटे वहीं इंतजार कर रहा था बैठकर। उसके पास थोड़े बहुत स्नैक्स थे, एक सॉफ्ट ड्रिंक था, पैसे वैसे कुछ नहीं थे। बाद में माउंटेन हट के स्टाफ ने उसको अकेले देखा, पुलिस को बुलाया। मैं नहीं जानती आपको कैसा लग रहा है पर ये खबर पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, जाने के बाद आई वाज स्टंड स्पीचलेस। मतलब ठीक है ऊंचाई तक पहुंचना अचीवमेंट हो सकता है पर 7 साल के बच्चे को आप अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हो, वो भी ऐसी जगह पे, हाउ इज दैट एन अचीवमेंट, बाय गॉड सीरियसली। पुलिस ने भी बहुत फटकार लगाई पिताजी को और डैड ने कहा कि हाँ लापरवाही हो गई। पर ये क्या है भाई, माउंट फूजी कहीं भागा नहीं जा रहा था, वो तो वही है सालों से, उसका जो चोटी है वो और ऊंची नहीं हो जाती आते 2 घंटे के अंदर, वो आपका बच्चा था आप उसको छोड़ के कैसे जा सकते हो। बाय गॉड, बच्चा थक गया था तो आज की चढ़ाई वहीं खत्म कर देते, पहाड़ अगले दिन भी वहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं जाएगा। खैर फिलहाल दोनों सुरक्षित हैं। मुझे नहीं पता मॉम के सुनने के बाद कौन कितना सुरक्षित रहेगा, बिकॉज मुझे जैसे पता है कि मॉम्स जो है वो ये खबर सुनने के बाद ऐसा सोच रही होंगी, मुझे जेन्युइनली ये दिमाग में आया था कि ऊंची चोटी पर पहुंचो तो मैं वहीं से धक्का दे दूंगी मैं, मुझे तो यही आया था दिमाग में, अच्छा लगे चाहे बुरा मैं तो वहीं से धक्का दे देती जाओ।

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, bhaiyon aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: ओके फाइन, मैं आपको थोड़ा से हल्के मोड में लाती हूँ। अच्छा, एक बचपन में ना कहानी, कहावत कह सकते, कहानी नहीं कहेंगे, कहावत बड़ी याद है मुझे, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है ना। आजकल तो बच्चे झूठ बोल रहे हैं, कैसे कैसे बैड वर्ड्स, कर्सिव वर्ड्स यूज करते हैं। हमने क्या पढ़ा बचपन में कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। हमको लगता था बात खत्म हो गई, झूठ बोलेंगे तो बहुत पाप लगेगा, नदी किनारे कोई सांप होगा, बच के जाएंगे वरना काट लेगा। पर सिंगापुर में कुछ ऐसा हुआ है जिससे पूरी चाइल्डहुड जो है वो वार्न हो गई और कंफ्यूज भी हो गई है, क्योंकि पांडान रिजर्वॉयर में किसी ने क्रोकोडाइल की खबर दे दी। अब उसके साथ क्या हुआ, एक फोटोग्राफ भी पास ऑन हो गई। भाई क्रोकोडाइल की फोटो है तो मामला बहुत सीरियस है, क्योंकि वहां काफी कुछ चलता है। पीयूबी ने अलर्ट कर दिया, सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हो गए, वाटर एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दिया गया, मतलब जो लोग वहां पे रोइंग, कैकिंग, कैनोइंग करते थे फिलहाल पानी से दूर हो गए सारे। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, पता लगा क्रोकोडाइल नहीं है, फोटो भी नहीं है, बिकॉज वो फेक फोटो है। सर्च ऑपरेशंस बंद हो गए और मामले में हो गई पुलिस की रिपोर्ट, क्योंकि ऐसी फेक इन्फॉर्मेशन से पब्लिक में बहुत ज्यादा पैनिक हो सकता है और बहुत सी एक्टिविटीज, लाइफस्टाइल रूटीन सब डिस्टर्ब हुआ ना। अब मुझे पता सबसे फनी बात क्या लग रही है, द कहावत, वी आर गोइंग बैक टू इट, कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। किसी ने झूठ बोला, लोग नदी किनारे गए, पर सांप तो छोड़ो, उसका दूर का रिश्तेदार भी नहीं मिला, क्रोकोडाइल तो बहुत दूर की बात है। और मजाक अपनी जगह है, पर ये फेक इन्फॉर्मेशन आजकल एआई की मदद से जो लोग बना देते हैं, फोटो डाल के आपने अपने तो मजे ले लिए, पर कितना कुछ डिस्टर्ब हुआ, पुलिस का कितना वक्त गया, लोगों की कितनी एक्टिविटीज डिस्टर्ब हुई, कितना डेली रूटीन का जो काम होता है वो रुक गया। भैया झूठ बोला पाप है, फोटो चेक करना अनिवार्य है। बाय गॉड।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: बाइकी डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
5: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। Time for your therapy session. Masti ka mantra with RJ Antara. Jahan news hai filmy, gossip hai spicy, aur music hai full on mast. Because happiness ka asli mantra lati hai RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, only on Radio Masti 24/7.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय, देखो रिश्तों की शॉपिंग थोड़ी मुश्किल होती है, राइट? कपड़े लेने हो तो साइज पूछो, जूते लेने हो तो पसंद पूछो, लेकिन भाई या बहन के लिए कुछ लेना तो दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। हाँ, पता सब होता है पर फिर भी दिमाग कंफ्यूज होता है, क्या इसको पसंद आएगा? भाई बहन है तब भी ये सोचते हैं हम, और अगर राखी के आसपास ये सवाल पूछा जाए तो ये लाइफ का सबसे बड़ा सवाल होता है। राखी ना, इट्स जस्ट नॉट एन इमोशनल बॉन्डिंग, धागा नहीं है, इसके साथ बचपन और पास आता है, नोकझोंक बढ़ जाती है, पुरानी लड़ाइयां याद आ जाती हैं, और फिर भाई बहन एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ ढूंढने लग जाते हैं, बिकॉज़ दे वांट द बेस्ट फॉर देयर लव्ड वंस, राइट? सिंगापुर में अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं तो आई हैव द सॉल्यूशन, कम हियर, कम क्लोजर, अरे कम क्लोजर ना। राखी शॉपिंग के लिए लिटिल इंडिया की तरफ अगर आप निकल रहे हैं तो ज्योति स्टोर एंड फ्लावर शॉप याद रखिए, नहीं भी निकल रहे तो भी जाइए, बिकॉज दिस इज दैट वन शॉप जहां पे आपको आंख बंद करके वो सब मिलेगा जो आप आंख खोल करके भी नहीं ढूंढ पाएंगे। कैंबल लेन पर ये शॉप पता है 1960 से मौजूद है, एंड इंडियन ट्रेडिशंस के लिए, एवरीडे नीड्स के लिए, पूजा के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हर कोई यही पहुंचता है बिना कुछ सोचे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप आंख बंद करके पहुंच सकते हैं और आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, समझ रहे ना, इतना बोला है मैंने तो। एंड राखी, ओ माय गॉड, इतनी डिजाइन्स है राखियों की कि मैं आपको क्या बताऊं। तो इस बार ना राखी लेते हुए सिर्फ ये मत सोचिएगा कितने की है, एक बार सोचना ये देखकर मेरे भाई के चेहरे पर स्माइल आएगी या नहीं, या ये गिफ्ट देख करके मेरी बहन को अच्छा लगेगा या नहीं। आई मीन देयर सो मच टू बाय। देखो गिफ्ट छोटा बड़ा या नहीं होता, राखी महंगी या सस्ती नहीं होती, इमोशंस ऑफ कोर्स मैटर करते हैं, बट स्टिल यार मैटर करता है गिफ्ट, बीइंग अ सिस्टर आस्क मी, करता है करता है। तो आप जरूर जाइए ज्योति स्टोर एंड फ्लावर शॉप, वन कैंबल लेन सिंगापुर, जहाँ पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं म्यूजिक की तरफ, जहाँ पे आप मेरे म्यूजिकल टेस्ट पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाई वेलकम बैक शो के सेकंड आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज मी मुग्धा और आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट पर। ये जो है ना, दिस इज प्योर बॉलीवुड आर जहाँ पर हम नॉट प्योर बॉलीवुड एक्चुअली एंटरटेनमेंट आर जहाँ पे हम एंटरटेनमेंट की बातें करते हैं। बॉलीवुड में ना फिल्में रिलीज होने से पहले क्या करती हैं? एटीट्यूड दिखाती हैं और दिखाने लग जाती हैं, क्योंकि अभी ना पर्दे पर फिल्म आई है नहीं। ट्रेलर के बाद एक्साइटमेंट अपनी जगह थी, लेकिन एडवांस बुकिंग ने ना काफी कुछ बयान कर दिया है। किसकी बात कर रही हूँ बताती हूँ। टॉक्सिक है ना यश की, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टॉक्सिक मूवी, जिसने कहा भाई जगह बनाओ हम आ रहे हैं। 4 साल बाद यश जो है वापसी कर रहे हैं बड़े पर्दे पर। तो कमबैक ऐसा है कि फिल्म ने रिलीज से पहले 5 फिल्मों के प्री सेल्स रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं। यस 5। आवारापन 2 अभी हाल में आई, धमाल 4 आई थी क्या, ओके, कॉकटेल 2 ऐसी फिल्में, और रिपोर्ट्स में ये पता लगा है कि 13 करोड़ तक पहुंच चुकी है इनकी कमाई, 13 करोड़। मतलब मुझे सबसे मजेदार चीज क्या लगती है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले फिल्म देखते हैं फिर कहते हैं वाह क्या ओपनिंग थी यार। आजकल क्या होता है, यश ने क्या कहा, नहीं भाई पहले ओपनिंग करवाएंगे धमाकेदार, सिर्फ तो हम देखेंगे ही। एंड ये ना सिर्फ यश का नाम नहीं, ऑडियंस का भी वो इंतजार है जो कि KGF 2 के बाद से हो रहा है। और टॉक्सिक देखने का ट्रेलर और टीजर देखने के बाद तो ये इंतजार बिल्कुल बेचैन कर रहा है लोगों को। पर अभी तो असली टेस्ट थिएटर में बाकी है। प्री बुकिंग ने बताया कि भीड़ तैयार है। अब टॉक्सिक देखने के बाद भीड़ क्या करती है ये तो आपको 26 अगस्त को ही पता लगेगा।

तो जो भी आपके दोस्त मित्र जा रहे हैं मूवी देखने, उनसे जरूर लीजिएगा रिव्यूज एंड रिएक्शंस और बताइएगा कि क्या ये एडवांस बुकिंग वाकई में एडवांस बुकिंग वर्थ थी या नहीं।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Hi, welcome back. म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुग्धा को, एंड दिस इज मस्ती हैंग आउट। कभी कभी लाइफ में लगता है ना कुछ चैप्टर्स क्लोज हो गए हैं, करियर का चैप्टर हुआ, शादी का हुआ, और फिर अचानक से एक पुराना चैप्टर आपके दरवाजे पर खटखटाता है। नॉक नॉक, who's there? हाँ, remember me? मैं किसकी बात कर रही हूँ? बता रही हूँ भाई, आई एम टॉकिंग अबाउट मेगन मार्कल। सूट्स, रेचल, ऑफ कोर्स मेगन मार्कल को कौन भूल सकता है। मेगन ने ना 2018 में एक्टिंग छोड़ दी थी, एंड नाउ आफ्टर 9 years रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शी इज मेकिंग अ कमबैक। जी, सो अकॉर्डिंग टू ऑल दीज खबर्स, मेगन गाय रिची की नेटफ्लिक्स की सीरीज द जेंटलमैन के पॉसिबल सीजन 3 में नजर आ सकती हैं। भाई ये तो मैं भी वेट कर रही हूँ। बातें शुरू हो चुकी हैं, बहुत ही शुरुआती स्टेज में है सब कुछ, रोल फाइनल नहीं हुआ है सीजन 3 को लेकर, अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन भी बाकी है। पर अगर मेगन का नाम किसी चीज के साथ जुड़ा है तो वो हवा में तो नहीं हो सकती। आप सोचो मेगन मार्कल वापस एक्टिंग करेंगी, वो भी गाय रिची की दुनिया में। सूट्स में कोर्ट रूम ड्रामा था, अब जेंटलमैन है, द लीगल फाइल्स एंड द गैंगस्टर, ऑल दैट। वाओ, दैट इज अ टोटल करियर अपग्रेड यार। मुझे ना कमबैक वाला आइडिया पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, एंड स्पेशली दिस वन। देखो अभी इसे कंफर्म तो मत समझो, पर अगर मेगन सच में जेंटलमैन में आती है तो एक बात तो तय है, ये वाला कमबैक थोड़ा जेंटलमैन वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ सीरीज का नाम जेंटलमैन है। बाकी तो सारे गैंगस्टर वाइब लेकर के घूम रहे हैं इसमें, सीरियसली।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: सो सम फिल्म्स आर देयर जिनका नाम सुनते लगता है वाओ दिस इज समथिंग। क्रीपी म्यूजिक बैकग्राउंड में आता है, आप सोचने लग जाते हो एंड वन ऑफ देम इज तुम्बा। सच में बाबा बारिश आ जाती है मेरे को तो। 2018 में आई थी पिक्चर, आई तो चली नहीं, उसके बाद ऐसी चली कि अब रुक नहीं रही है। हर 5 मिनट में ये वैसी वाली डरावनी नहीं थी पर भाई साहब बहुत खतरनाक थी। बारिश, हवेली, अजीब सा सन्नाटा और वो हस्तर। अब उस दुनिया में एक नया चेहरा एंटर हो चुका है, आपको पता है, आलिया भट्ट। खबर ये है कि आलिया भट्ट ने तुम्बार 2 की शूटिंग स्टार्ट कर दी है। सो आलिया को इस फिल्म के सेट्स पर सोहम शाह और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ स्पॉट किया गया है। यानी कि तुम्बार ऑलरेडी इंटेंस दुनिया की अपनी शुरुआत कर चुकी है और आलिया इसका पार्ट बन चुकी है, ये तो सबको पता ही था। ऑफिशियली शी हैज स्टार्टेड शूटिंग। अब ये एक फुल फ्लेज्ड हॉरर प्रोजेक्ट उनका है जो कि पहला होगा एक तरह से देखा जाए तो, देखा गया जाए पहला ही है। मुझे पता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लग रहा है, आलिया को हमने इतने सारे शेड्स में देखा है, इन शेड्स, इन डिफरेंट शेड्स, विद डिफरेंट शेड्स, रोमांस, ड्रामा, एक्शन, सब कुछ। ये वाला हॉरर, इट्स गोना बी अ वेरी डिफरेंट शेड। तुम्बार की दुनिया है ना, मतलब शूटिंग के बाद अगर आलिया घर जाके बोलेंगे आज का दिन बड़ा डरावना था तो हम सीरियसली पूछ भी नहीं सकते कि कितना डरावना। तो मेकर्स ने भी कहानी आलिया की कैरेक्टर के बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं है। आई एम श्योर आलिया तो हल्का फुल्का तो कुछ नहीं होगा, कुछ भारी भरकम ही सोच के रखा होगा, है ना। इस सस्पेंस को सस्पेंस ही रहने देते हैं। एक बात है, अगर तुम्बार 2 ने पहले पार्ट वाला एटमॉस्फेयर पक्का क्रिएट कर दिया तो आपको थिएटर्स में पॉपकॉर्न खाने में भी काफी दिक्कत आने वाली है। पकड़ के बैठे रह जाएंगे आप पॉपकॉर्न अपने।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: कुछ शोज होते हैं ना जो आप देखते नहीं है, आप उनमें घुस जाते हैं, एक एपिसोड फिर दूसरा एपिसोड, और पता लगता है कि ओ माय गॉड बिंज वॉचिंग हो गई, शो खत्म हो गया पर ये लास्ट है, ओ हो खत्म भी हो गया, ओ माय गॉड। ऐसा ही कुछ हुआ था बैरस ऑफ बॉलीवुड के साथ। जब ये शो आया था या आने वाला था, किसी को लगा नहीं था कि ये इतना बैरस होने वाला है कि लोग इसको बिंज वॉच कर लेंगे। आर्यन खान का डेब्यू था बेसिकली, पर ये वाकई बहुत कमाल का था। और इसने एक बात सच में प्रूव कर दी, सारे एक्टर्स एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, है ना। हुआ भी कुछ ऐसा। खैर, आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू हुआ, बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे का पूरा छुपन छुपाई अब सबने देखा, सर्कस देखा हमने। एंड देन द क्वेश्चन वाज, अब सीजन 2 कब आ रहा है? बिकॉज ये खत्म ऐसी जगह पे हुआ था कि वेट व्हाट है, हाँ सीजन 2। लगता है बॉलीवुड के फैंस की डिमांड सुन ली गई है, कम से कम कोशिश तो हो रही है सुनने की। सीरीज के राइटर बिलाल जो है, बिलाल सिद्दीकी ने बताया है कि नेटफ्लिक्स और शाहरुख की प्रोडक्शन कंपनी जो है, उन्होंने सीजन 2 को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। ऑफिशियली अभी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, पर कोई बात नहीं, अगर ये दो बड़े लोग बात कर रहे हैं तो मतलब बात काम की होगी, बच्चे बीच में नहीं बोलेंगे, है ना। ऑनेस्टली मुझे ना ये बहुत बॉलीवुड वाली बात लगती है, पहले ऑडियंस बोलती है वाह क्या शो था, उसके बाद क्या होता है ऑडियंस बोलती है अगला सीजन, और फिर मेकर्स जो है बैठ के सोच रहे होते हैं यार पहले बताओ सीजन 1 में हमने क्या क्या कर दिया था जिसको रिपीट नहीं करना है, ये विचार विमर्श हो रहा होगा टेबल पे। पर अगर सीजन 2 बनता है ना, मेरी एक रिक्वेस्ट है, पहले सीजन में जितना बॉलीवुड था ना, दूसरे में थोड़ा और बॉलीवुड डाल देना, और इमरान हाशमी को ऊपर से बहुत सारा स्प्रिंकल कर देना, प्लीज प्लीज। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज, मानोगे ना मेरी बात? हाँ मेरी बात तो मानोगे, कुछ पता है।

0: नाचने का मन है।
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: दूध उबालोगे? दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय वेलकम बैक शो के थर्ड एंड द लास्ट आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी बच्चों की दुनिया की मैथ्स इतनी सिंपल होती है ना कि बड़े बेवजह उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सिंपल है ना, 10+10 20 20+10 30, यही तो होता है। स्कूल में हमने क्या सीखा था, 50+10 60। अब एक छोटी बच्ची ने इतना ही तो किया, जवाब 60 हुआ, 60 क्यों ना बना दिया जाए, पर क्रिएटिव तरीके से। कैसे? वो एक दुकान पे सामान लेने गई और वो अपने साथ नोट लेकर गई। अब फर्क सिर्फ इतना था कि वो 50 और 10 का नोट लेकर गई, लेकिन अलग अलग नहीं, एक ही नोट, आधा 50 का आधा 10 का, उसको चिपका दिया। 50+10 60। देखो इक्वेशन तो सही था बट नोट थोड़ा कस्टमाइज हो गया है ना। मजेदार बात ये थी कि बच्चे को ना पूरा भरोसा था कि ये आइडिया काम करेगा। बिल्कुल सीरियसली वो दुकान पे गई और टेप टुगेदर नोट जो था उसको पकड़ाया, एंड उसके बाद दुकानदार ने इसका वीडियो बनाया और वो बच्ची भी बेचारी समझ नहीं पाई कि मैंने गलत क्या किया है, और वो दुकानदार हंस रहा था बेचारा क्या करे, है ना। कई लोगों ने कमेंट किया, किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सरकार चाहे तो ऐसा आइडिया लेके एक नया नोट निकाल सकती है, नॉट बैड है ना, इतने इतने नोट्स निकालने की जगह ऐसे कुछ प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक नया नोट बना दो। 50+10 60 कैलकुलेशन तो बिल्कुल सीधी थी उसकी, बस ये था कि नोट थोड़ा ज्यादा क्रिएटिव हो गया। बच्चों की यही बात है ना, बड़ी प्यारी होती है, जहां पे हम हर चीज में नियम तरीके प्रोसीजर्स ढूंढते रहते हैं, बच्चे बस काम होना चाहिए। साम दाम दंड भेद कैसे भी काम होना चाहिए, काम हो गया है ना।
2: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपर्ट इंडियंस, एनीटाइम एनीवेयर।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिया के बारे में तो सब जानते हैं। हाँ, अब टेक्नोलॉजिया इतनी आगे निकल गई है कि रोबोट्स भी ओलंपिक में पार्ट ले रहे हैं। आगे निकल गई ना, तो वो भी आगे निकल रहे हैं। Yeah, you heard it right. बीजिंग में ना वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स जो है वो शुरू हो रहे हैं, जहाँ पे रोबोट्स रनिंग से लेकर के अलग अलग चीजें कर रहे हैं। एथलेटिक रोबोट्स हैं, रियल वर्ल्ड टास्क में वो कम्पीट करेंगे इस बार, मतलब कम्पीट करेंगे। तो कॉम्पिटिशन में 2000 से ज्यादा रोबोट्स जो है yes, टीम का हिस्सा होने वाले हैं। पर गेम शुरू होने से पहले एक रोबोट ने शायद ये सोच लिया था, मैं मेडल लेने नहीं आया हूँ भाई, मैं तो बस ट्राई करने आया हूँ, ट्राई करके देखते हैं। तो क्या हुआ, ट्रेनिंग के दौरान एक ह्यूमनॉइड रोबोट जो है फुल स्पीड में दौड़ा दौड़ा दौड़ा दौड़ा दौड़ा दौड़ा, एंड पर पहुंचा। प्रॉब्लम बस इतनी हुई कि उसको ब्रेक लगाने नहीं आया, उसको ये नहीं पता था रुकना कैसे है। शुरू करना तो चला दिया था, बता दिया था, रुकना कैसे है बताया क्यों नहीं, नहीं बताया बॉस। वो सीधा जाकर के सेफ्टी कुशन से टकराया, पीछे गिरा, बॉडी से स्पार्क निकले और मैं जा रहा हूं। वो रिलैक्स मोड में आ गया बीच कमर से। पता है सबसे फनी बात क्या है, हम इंसानों को हमेशा कहा जाता है स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्रोल। रोबोट ने पहले सोचा स्पीड दिखाते, कंट्रोल तो हम कर ही लेंगे। ना मुन्ना ना, ये हॉलीवुड की फिल्म नहीं है, आपको कंट्रोल कोई और कर रहा है और उसने आप में कंट्रोल बटन को एक्टिवेट नहीं किया है, तो आप कंट्रोल नहीं हो सकते। समझ रहे ना इंसान और रोबोट्स का अंतर, अगर इंसान आपको कंट्रोल मोड में नहीं डालेगा तब स्पीड मोड में रहोगे और क्रैश हो जाओगे। यस, सीखो दौड़ने से पहले रुकना सीखो। वाह क्या बात कह दी मैंने, है ना।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: लाइफ में हर किसी का अपना एक शौक होता है। किसी को बातिंग करना बहुत पसंद है, किसी को नहीं बोलना पसंद है, उसको लिखना पसंद है, किसी को कैमरा के सामने आके बातें करना बहुत पसंद है, किसी को कैमरा के सामने नहीं आना है पर बातें करनी है, किसी को इंटरव्यूज देना बहुत पसंद होता है। मतलब अलग अलग शौक है, भांति भांति के लोग है ना। पॉडकास्ट बनाना, बिहाइंड द सीन्स रह के पूरा शो तैयार करना, अलग अलग चीजें हैं। तो हम क्या करते हैं, हम मस्ती मीडिया की दुनिया में आपको काफी कुछ सिखाते हैं, क्योंकि है बहुत कुछ। रिसर्च, राइटिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन, इंटरव्यूज, कंटेंट प्लानिंग, सोशल मीडिया, टीम की मेहनत सब होती है। सिर्फ एक माइक मैं और आप नहीं होते हैं। इसीलिए अगर आपको कभी सीरियसली आपने सोचा हो कि आरजे पॉडकास्ट होस्ट, प्रेजेंटर, कॉन्टेंट क्रिएटर, वीडियो होस्ट, इंटरव्यूअर, इवेंट होस्ट बनना है, पर कैसे बनना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मस्ती मीडिया अकेडमी सिंगापुर में ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया प्रेजेंटेशन की जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे कम्युनिकेशन, वॉइस, कॉन्फिडेंस, स्टोरी टेलिंग, इंटरव्यूइंग, ऑडियंस एंगेजमेंट, ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जिन पे फोकस करना सिखाया जाता है। एंड वी हैव डिफरेंट लेवल्स, यू नो, बिगिनर्स के लिए अलग है, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो अलग है, उसके बाद एडवांस लेवल है, प्रोफेशनल लेवल है, सब अलग अलग लेवल्स हैं। क्योंकि मीडिया में ना सिर्फ अच्छी आवाज होना काफी नहीं होता है, दैट्स अ बोनस पॉइंट फॉर यू। आपको सुनना भी आना चाहिए, सही सवाल पूछना आना चाहिए। नहीं तो जया बच्चन जी आपसे कहेंगे, ये कोई जगह है ये सवाल पूछने का, है ये कोई जगह है, नहीं आप क्या पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। क्लियरली अपनी बात रखनी आनी चाहिए, ऑडियंस से कनेक्ट कैसे करना आना चाहिए। तो अगली बार जब भी आप रेडियो सुने और मन में आए कि काश मैं भी ये सब कर सकती, कैसे करूं या कर सकता कैसे करूं, तो इस काश को थोड़ा सीरियसली ले लेना, हो सकता है आपको अपनी आवाज के साथ साथ एक नई दिशा मिल जाए। मस्ती मीडिया अकेडमी सिंगापुर है हमारा पेज। और अगर आप एक काम करें, हमारा जो मेल आईडी है ना, info@radiomasti.com.sg, वहां पे आप हमें एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन लेकर भेज दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म भी वहीं से मिलेंगे आपको। आपके इंट्रो पर आपकी पूरी किस्मत डिपेंड करती है। तो जल्दी से जितना मैंने कहा उतना करिए और एक गाना एंजॉय करिए एंड देन वापस आइए।

0: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया अकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, behnor bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: वेल तो आज के लिए बस इतना ही। मंडे को मैं आपको यहाँ तक लेकर आ गई हूँ। आगे का सफर अब आपके हाथ में। 3 घंटे निकल गए, आपको पता लगा? फ्रैंकली मुझे पता लगता हर बार, ऐसे थोड़ी हर आर में मैं आपको बताती हूँ मिस आर में आ गए, पता सब लगता है पर भार ही नहीं लगता। मजेदार गाने सुनते उछलते कूदते बीत जाते 3 घंटे, इसलिए पता नहीं लगता। थोड़ी मस्ती, बहुत सी बातें, खबरों पर हैरानी हुई, कुछ पे गुस्सा आया, कुछ पे हंसी आई और कुछ ने सोचने पर मजबूर किया है। हाँ, अब ना मैं आपको ज्यादा नहीं रोकूंगी, डोंट वरी, क्योंकि पता है मंडे की शाम और जिंदगी ना रेडियो के अलावा बहुत कुछ मांगती है। जिंदगी में बहुत काम है, अभी रेडियो तो आप सुन ही रहे हैं, मंडे आपका खत्म होने वाला है, तो जो बाकी बचे काम है उनको निपटा लीजिए। तो जहां भी आप हैं अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और आज की शाम को बस ऐसे ही निकलने मत दीजिएगा। दिस इज मी मुग्धा और ये था मस्ती हैंगआउट रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। अगली मुलाकात तक के लिए टाटा, बाय बाय। और हाँ, रेडियो मत बंद करिएगा, क्योंकि मेरी आवाज बंद हो रही है, रेडियो नहीं, और बंद नहीं हो रही है, थोड़ी देर के लिए चुप हो रही हो बस आपके साथ। बाकी तो मैं आई रही हूँ अगले शो में। हाँ नहीं तो आए बड़े।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट.

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे
2: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
3: नो नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
5: चेक इट

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
0: चेक इट

0: इनकी शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश, योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वायरल एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व्ड फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म। यू सी, ट्यून इन टू मी ऑन मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
2: अर्जुन आएंगे
1: न, करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे

0: नचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats

0: जा सकते हैं।
1: द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सायानी बोल रहा हूँ।
3: जोश में रहो।
4: ओ वेलकम है जी, अपना ही गराज है। ट्रक का बड़ा गीत है जी।

0: पेट्रोल ते पवाए नी।
1: कोई गल नी, साड़ी गड्डी ते गुडवेल नाल चलती है।
2: Welcome to your chill zone. Musty Music Cafe. Only music, only musty.

0: प्रणाम सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
3: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
4: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
0: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे। फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चलो सुनते हैं।

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस उसे वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो
1: बोलो बोलो कौन है वो कौन आया है शाम के वक्त कौन आया था सुबह के वक्त ओहो चारों ओर आते ही मेरे पास काम ही काम तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम वाह वाह वाह वाह क्या बात है. हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग रेडियो मस्ती 24/7 बिल्कुल शुरू हो चुका है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस मंडे शाम का हमारा ये शो हो चुकी है 24 अगस्त. इट इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग बिकॉज यू आर गेटिंग द डबल डोज ऑफ अंतरा. आई मीन भाग यही खुल गए हैं मेरे और आपके भी साथ साथ में. हाउ लकी आप मैंने कहा ना मतलब वापस आने लगी है क्या होता है ना कि जब आप छुट्टी से वापस आते हो तो आपकी सिर्फ बॉडी बॉडी आती है, आपकी जो आत्मा होती है ना वो वही पे छुट्टी वाली जगह पे रह जाती है. उसको वापस लाने में थोड़े से लाइक 4-5 मोर बिजनेस डेज समटाइम्स मोर लग जाता है. तो वेल ऐसा है कुछ ख्याल आज का काफी अच्छा है क्योंकि इट विल ऑल डिपेंड ऑन योर चॉइस नॉट ओनली योर गाने के चॉइस विच इज ऑफकोर्स हमारा रिक्वेस्ट शो है. तो आप बिंदास 9151896 जो है उधर आप भेज सकते हैं क्या सुनना चाहते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव कॉन्टेस्ट्स फॉर यू. मजा ही मजा. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे यहाँ पे कॉन्टेस्ट जो है खेलने के मौके जो है हमें मिलते रहते हैं. सो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट एक्साइटिंग आज की ये राइड टिल 8 PM. सो वेल चाहे वो रक्षाबंधन के लिए हो चाहे वो मैजिशियन यानी कि मेंटलिस्ट सुहानी शाह के लिए हो आई हैव अ लॉट टू गिव अवे टुडे. सो यप आप जरा देखे समझे सोचे और ट्यून इन करके बस रहे मेरे साथ रेडियो मस्ती 24/7 पर. एंड साथ साथ में ऑफकोर्स मैं अपनी जो है वेकेशन की कहानी अभी सुनाती हुई जाऊंगी क्योंकि ऑफकोर्स वो तो बताना ही बताना है. एक्साइटमेंट ही इतनी है कि क्यों ना बताऊं है ना. शुरुआत उसी से करेंगे लेकिन फिलहाल चलते हैं घाघरा वाया आगरा इज वेटिंग फॉर अस फ्रॉम रेखा भारद्वाज एंड विशाल ददलानी ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7. गुड इवनिंग.

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: 12 बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
1: हाँ जी, कहाँ से करी जाए कहानी शुरू। रेडियो मस्ती 24/7 मैं अंतरा आपके साथ यहाँ पर, और जो है चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। और इससे पहले यहाँ पर खबरों और कॉन्टेस्ट और ये सारी की सारी बातों का सिलसिला चालू हो जाए कि भाई बताना ये था, और कई दिनों से मैं कह भी रही थी कि बनता है एक हॉलीडे तो बनता है, यहाँ बनता है वहाँ बनता है, बट फाइनली आई हैपन टू हैव दैट हॉलीडे, ठीक है। एंड मैं गई कोसामुई, दैट इज राइट भाई। थाईलैंड का एक बहुत ही खूबसूरत सा आइलैंड है कोसामुई। एंड भाई मैं सबसे पहले तो आई वॉज अमेज्ड विद द एयरपोर्ट इन इटसेल्फ। आई कैन नॉट इवन कॉल कोसामुई का एयरपोर्ट एन एयरपोर्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज इट वॉज नथिंग लेस देन अ रिजॉर्ट, ठीक है। मैंने ऐसा एयरपोर्ट मतलब अभी तक की जिंदगी में तो बिल्कुल भी नहीं देखा। येस आई नो, सो मेनी टाइम्स वी टॉक अबाउट कि चांगी में ये है और ये बहुत ही अमेजिंग है, बट दिस इज डिफरेंट, ओके। यहाँ पे रनवे है, रनवे के बगल में आसपास यू नो बहुत ही खूबसूरत ग्रास ग्रीन एंड रिजॉर्ट के जैसे सब कुछ बना रखा है। वही रनवे के बगल में बीन बैग्स डाले हुए हैं, आप वहां पे लेट के फ्लाइट्स उड़ते और लैंड करते हुए देख सकते हैं। जस्ट इमेजिन हाउ कूल इज दैट, इट वॉज जस्ट अमेजिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोसामुई इन इटसेल्फ उसका वेदर जो है वो नॉर्मल बाकी थाईलैंड के वेदर के हिसाब से नहीं चलता है, उसके अपने ही जो होते हैं। सो थाईलैंड में इस टाइम पे जो है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस बैंकॉक वगैरह में काफी बारिश का सीजन वगैरह हो रहा है, बट ना कोसामुई में थोड़ी देर की बारिश, बट वेल ऐसा ही कुछ है। सो हम लोग, मैं और अपने पूरे गैंग के साथ वहां पर बिल्कुल हम लोग छुट्टियां मनाने गए थे, एंड वी हैड सच अ गाला टाइम, आई टेल यू इतना खाया। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एज देसीज, ओके इंडियंस बाहर निकलते हैं, वी स्टिल क्रेव फॉर इंडियन फूड फॉर सम रीजन, राइट। कोसामुई जैसी जगह में भी हमने इंडियन खाना ढूंढ निकाला, और क्या इंडियन खाना था मैं आपको क्या बताऊं। वो प्याज और भिंडी की इतनी टेस्टी सब्जी बनाई थी भैया ने कि ऐसा लगा हाथ चूम लो इनका, कि क्या ही बना दिया तुमने। ये आप सोचो, हम लोग गए इतना दूर, ठीक है, और वहां जाके क्या खा रहे, पीली दाल, भिंडी की सब्जी और ट्राइंगल वाले पराठे। आई मीन इट वॉज लाइक अ डोज ऑफ नॉस्टैल्जिया, एंड वी वर लाइक कि भाई ये चलेगा नहीं दौड़ेगा, इट इज सो वेरी नाइस। सो यस, अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, वी जस्ट एट अ लॉट, ओके। मैं तो अभी शक्ल भी उतनी ऐसी नहीं,

ओके भाई, कहानियां तो ऐसे बहुत सारी है. देर वर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच आई डिड, देर आर लॉट ऑफ एडवेंचरस थिंग्स विच आई डिड. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई सॉ एन एक्चुअल फाइट, म्योथाई की फाइट थी. एंड भाई आंखें बंद करके ही सही, आधा आधा, बट आई काइंड ऑफ सॉ इट एंड आई वॉज लाइक मैं ब्रेव हूँ मैं देख सकती हूँ. सो या देर ट्रैवल डज समथिंग टू यू राइट. सो वेल ये था इन शॉर्ट, वेरी वेरी इन शॉर्ट, कुछ ऐसी कहानियां जो मेरे ट्रैवल से रिलेटेड थी. बट अभी के लिए बस इतना ही. बीच बीच में और कभी अगर आपको इंटरेस्ट है तो मुझे पूछ लेना, मैं आपको जरूर बताऊंगी. बट फिलहाल लेट्स गो फॉर अ म्यूजिकल ब्रेक. कम बैक, सोचते रहो कि क्या गाना रिक्वेस्ट करना है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड आई विल कम बैक विद द फर्स्ट खबर ऑफ द डे. गुड इवनिंग.

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: क्या गाना यार, आंखें भी होती है दिल की जुबान। भाई क्या गाने बनते थे, मैं तो यही सोच रही हूँ। इनफैक्ट जब मैं अभी हॉलिडे पे भी थाईलैंड में बैठकर हम लोग जो है रात को जब गानों की बात आई, इट वाज ओनली द ओल्ड सॉन्ग्स व्हिच वर कमिंग आउट एंड वी वर प्लेइंग, वी वर हमिंग अलोंग एंड हम जोर जोर से गा रहे थे क्योंकि वही गाने जो हमें याद है। क्या करे क्या करे। फिलहाल ट्रैफिक अपडेट ले लेते हैं। 5:30 बज चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। हैवी ट्रैफिक आपको इस वक्त मिलेगा ऑन इन केपीई टनल टुवर्ड्स टीपीई बिटवीन पीआईई एंड ईसीपी। वेकर ब्रेकडाउन की खबर ऑन SLE टुवर्ड्स BKE आफ्टर TPE। हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन AYE टुवर्ड्स इटवर्स बिटवीन क्लेमेंटी एवेन्यू 6 एंड बोना विस्ता। सो वेल, ये था इस घंटे का जो है ट्रैफिक अपडेट। यहाँ पे जो है हमारी सपना आंटी का रिक्वेस्ट आ चुका है। ओहो, क्या रिक्वेस्ट दिया है इन्होंने, वो भी रेट्रो वाला, ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम सपना आंटी। बट वेल, लेट मी फाइंड आउट एंड प्ले दैट फॉर हर इन जस्ट अ व्हाइल। तब तक के लिए आप भी अपनी चॉइस जरूर मुझे बताएं। एंड यस, हैंग ऑन टाइट ओवर देयर बिकॉज आई विल कम बैक एंड टेल यू की व्हाट इज द कॉन्टेस्ट ऑल अबाउट, पहला वाला फॉर दिस इवनिंग।

0: किसकी याद सताए जनाब, अकेलापन रात का तो हम है ना।
1: रात अकेली है।
0: रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से।
2: कभी मेरे साथ कोई रात गुजार।
3: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
4: बाइकी डन है मम्मा।
5: ड्यूटी
6: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
5: मैं उठता था।
3: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: हिट्स आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले।
1: एक ही गाना याद आता है जब जब रक्षाबंधन आता है, हालांकि कई सारे गाने हैं बट दिस वन इज क्वाइट स्पेशल राइट। फूलों का तारुका सबका कहना है, बट द थिंग इज ओवर द इयर्स क्या है कि रक्षाबंधन इज जस्ट नॉट अबाउट यू नो भाई बहन, वो एक तरह से उसको पोर्ट्रे कर दिया गया था। इवेंचुअली आज की डेट में पूछा जाए तो कोई भी सिबलिंग, इनफैक्ट आपके कजन्स भी जिनको, जो सिंगल चाइल्ड है राइट, उनके तो कजन्स होते हैं और जिनको वो राखी बांधते हैं, तो उनके लिए रक्षाबंधन लिए स्पेशल हो जाता है। कई सारे घरों में दो महीना होती है, वो लोग एक दूसरे को राखी बांधती है बिकॉज इट्स अबाउट दैट यू नो प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन टू ईच अदर एंड देन दैट ट्रेडिशन ऑफ यू नो सेंडिंग ईच अदर राखीज। अगर आप बहुत दूर दूर रहते हैं, अगर एक ही जगह पे रहते हैं, तो यू नो काइंड ऑफ गेटिंग टुगेदर, गेटिंग द फैमिलीज टुगेदर, फेस्टिविटीज है, सेलिब्रेशन है, और इन सब के लिए जो है जो जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सामान चाहिए, उसके लिए कहां जाना पड़ेगा दोस्तों? पता है ना यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योति स्टोर्स एंड कैंप वन कैंपल लेन्स, ज्योति स्टोर एंड फ्लावर शॉप। आई थिंक जब से मैं सिंगापुर में आई हूँ तब से मैंने अचानक कितनी बार हर चीज के लिए हर त्योहार पे मैं तो डेफिनेटली वहां पे पहुंच जाती हूँ बिकॉज आई नो दैट आई डोंट हैव टू हंट फॉर एनीथिंग एल्स एनीवेयर एल्स। एंड मतलब जो वैरायटी मुझे वहां पे मिलती है एंड फॉर द प्राइस एंड एवरीथिंग, आई थिंक दैट्स द बेस्ट प्लेस। सो अगर अभी तक, आई नो इट्स जस्ट राउंड द कॉर्नर, अभी तक आपका लास्ट मिनट वाला वो जो है गियर पे आपने पैर नहीं रखा है कि ओ अच्छा इसके लिए तो रह गया था, रक्षाबंधन तो आने वाली है, कुछ लेना है, सो देन यू कैन हेड टू ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप। बट उसी के साथ एक कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं हम लोग इस बार, कुछ ऐसा है कि ढूंढ के निकालिए वो अपने सिबलिंग्स, बेसिकली भाई या बहन के साथ, अपने किसी भी सिबलिंग के साथ अपनी पुरानी बचपन की कोई फोटो, ठीक है, फ्रॉम देन सेंड अस साथ में नाउ, उसी सिबलिंग के साथ आज की डेट में जो है या रीसेंट की कोई भी फोटो, सो देन एंड नाउ करके ये दोनों पिक्चर्स जो है आपको हमें भेजना है एंड स्टैंड अ चांस टू विन समथिंग रियली वेरी स्पेशल दिस रक्षाबंधन। यस वी आर सेलिब्रेटिंग दिस बॉन्ड एंड वॉट other than photographs can be just amazing. Pictures जो है ना उनके ये teleport करने का इसमें एक वो होता है, शक्ति होती है। So the moment you will go and find that अपने you know शायद रक्षाबंधन की कोई photo हो आपके बचपन की अपने sibling के साथ, so if you have that, अरे बहुत ही मजेदार हो जाएगा मामला। And recently I'm sure that कभी ना कभी आप दोनों ने एक साथ या आप तीनों या चारों whatever number it is siblings ने साथ में photo जरूर खिंचाई होगी। So then and now that is what you have to do, send us these two pictures and two parties participate and win in this Raksha Bandhan contest. है ना कमाल का मामला। मैं भी भेजूंगी अपने भाई के साथ, बट कोई हंसेगा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं को भेजूंगी जो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। या ये एक और मैंने यहां पर जो है एंड फ्लावर शॉप में रक्षाबंधन के इस कॉन्टेस्ट की बात यहाँ पे करें, अगर सपना आंटी के रिक्वेस्ट की बात, वो भी उतनी ज्यादा जरूरी है। आज इन्होंने कहा कि धुमतना लाइक शी हैज कम काइंड ऑफ इन दिस मोड बिकॉज आज तो रमेश जी घर पे है, रोमांस ही रोमांस, रेडियो वाला रोमांस। बट या बैकग्राउंड में ये गाना, लेट्स उनकी चॉइस, इट्स जस्ट योर चॉइस, गुड इवनिंग।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस उसे वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो।
1: Oh my God. I am getting pictures of then and now. क्या बात है? Radio Masti 24/7 मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ मस्ती वॉइस आपकी चॉइस में बिल्कुल जुड़ी हुई है और यहाँ पर हमारे पास जो है फोटोज सिबलिंग्स की फोटोज जो है वो आनी शुरू हो चुकी है. सो इफ यू हैव अपने सिबलिंग के साथ बचपन की कोई फोटो देन एंड अभी हाल ही में लेटेस्ट हाल फिलहाल की कोई फोटो विच इज नाउ. सो देन एंड नाउ की ये दोनों फोटोज जो है आपको हमें यहाँ पर भेजनी है सो दैट यू कैन स्टैंड अ चांस टू विन समथिंग रियली नाइस दिस रक्षाबंधन. तो फटाफट से करो करो जल्दी जल्दी करो क्या पता आज आपकी लॉटरी लग जाए. मूड अच्छा है मेरा बहुत ही ज्यादा. हॉलीडे से आने के बाद वैसे अच्छा ही होता है जबकि दिल बहुत टूटा था. गाना दिल से यही निकल रहा था नहीं जाना मेरे यार मुझे घर नहीं जाना. लिटरली हम सारे के सारे सबकी यही हालत थी. एक दूसरे को खींच तान के जैसे तैसे करके जो है हम अपने आप को रियलिटी में वापस लेकर आए हैं ये वादा करते हुए कि जल्द वापस से प्लान करेंगे. लेकिन ये बात मुझे यहाँ पे ऑन एयर बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए. हाँ जी सो आमिर खान की बात करते हैं तुरंत. एंड ये आमिर खान हमारे जो है मुझे नहीं पता ये क्या चाहता है जिंदगी से क्योंकि मैं तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ इनको लेकर. सो अपेरेंटली रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड आमिर खान इज सपोज टू प्ले दिस 25 ईयर ओल्ड इन अ स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म कॉल्ड ललकारा. है ना हमारे 61 ईयर ओल्ड आमिर खान जो है उन्होंने अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है. सो ही इज गोइंग टू बी दिस क्रिकेटर ठीक है. एंड ये जो है ही हैज टू बिल्कुल ऑल्टर हिज फिजिक फॉर द रोल बाईपासिंग डिजिटल डी एजिंग एफेक्ट्स टू मीट द एथलेटिक्स डिमांड ऑफ द कैरेक्टर. द नैरेटिव जो है कहा जा रहा है सेंटर्ड अराउंड द हिस्टोरिकल 1952 का टेस्ट सीरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फोकसिंग स्पेसिफिकली ऑन द लाइफ ऑफ लेजेंडरी क्रिकेटर लाला अमरनाथ ड्यूरिंग हिज अर्ली प्लेइंग ईयर्स. नाउ ऑफकोर्स आशुतोष गोवारिकर के साथ आमिर खान के वापस से मिलन होने वाला है आफ्टर लगान विच वॉज ऑल्सो क्रिकेट. सो वेल देखते हैं क्या क्या रंग लाती है. प्रोडक्शन हाउस की बात करें तो फरहान अख्तर और नितेश सिद्धवानी जो है वो साथ में आए हैं इस मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए. यार ये क्या चल कह रहा है भाई वाई 61 ईयर ओल्ड वॉन्ट्स टू बी 25 ईयर ओल्ड. आई थिंक दैट इज द होल थिंग एवरीवन वॉन्ट्स टू लुक यंग everyone wants to be young. हम हो नहीं पा रहे हैं लोग यूथ फाउंटेन का पता बता नहीं रहे हैं जो कर रहे हैं और इनके पास मौका है तो क्यों हाथ से जाने देंगे. सही बात है अंतरा गाना प्ले कर दे अगला. गुड इवनिंग.
2: Oh yeah.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो
1: मेरा जिम वाला गाना यहाँ पर चल गया और आज खौफ जो है मेरे अंदर जिम जाने का वो अलग ही लेवल पे राइड कर रहा है। 6:04 हो चुके हैं ऑन द स्टूडियो क्लॉक रेडियो मस्ती 24/7। मैं अंतरा आपके साथ गुड इवनिंग मस्ती वॉइस आपकी चॉइस जो है वो आप सुन रहे हैं। एंड क्या होता है ना कि वेकेशन पे आपकी डाइट भी वेकेशन पर ही होती है, ठीक है, और बाकी तो आपको तो पता ही है कि कितनी बड़ी फूडी हूं मैं तो बहुत ही मेहनत करके जो कुछ ग्राम कम हुए थे और थोड़ा बहुत जो कुछ अच्छा शुरू ही हुआ था उसके बीच में आ गई वेकेशन। अब वेकेशन जो भी 2-3 जो भी है उस पे हमें लगा कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो हमने काफी सारा खाया। तो आज जब हम वेकेशन के पश्चात प्रवेश करेंगे तो पता नहीं जिम में क्या ही होगा हमारा और ट्रेनर क्या किस तरह का जो है जो यमराज बन के हमारे सामने खड़े हो जाएंगे और क्या क्या नहीं सुनाएंगे हमको आज तो मतलब कल सुबह अगर मैं शो पे आ जाऊं तो समझ लेना कि बच गई। वेल यहाँ पर ये सारी बातें हमारी वेकेशन वाली तो चलती रहेंगी, हॉलिडे की कहानियां भी चलती रहेंगी, बट उसी के साथ साथ यहाँ पे कॉन्टेस्ट भी चल रहा है। एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, दूसरा थोड़ी देर में वापस से शुरू होने वाला है। सो वेल रक्षाबंधन का कॉन्टेस्ट चल रहा है एंड हमने कहा है कि देन एंड नाउ वाली फोटोग्राफ जो है ढूंढ के निकालिए और ढूंढ के निकाल के हमें भेज दीजिए 9151896 भाई सिबलिंग्स को मैं ये मौका दे रही हूँ दैट गो बैक रिवाइव दोज स्पेशल मेमोरीज विथ योर लव्ड वंस। ठीक है, आपने शायद राखी में अपने सिबलिंग्स के साथ जो है फोटो खिंचाई होगी या फिर जनरली भी हर सिबलिंग के पास अपने एक दूसरे की फोटो है आपके फोन के गैलरी में तो 110% होगी। सो बचपन की विच इज देन एंड हाल फिलहाल की विच इज नाउ, ये दोनों फोटो भेज देनी है टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट ऑफ ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप को कर्टसी, बिकॉज ऑफ कोर्स राखी के लिए लुम्बा के लिए अलग अलग राखी के और त्योहारों के सामान के लिए देयर इज ओनली वन शॉप वी गॉट टू गो टू विच इज ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप विच इज वन कैंपल लेन लिटिल इंडिया में। वेयर एल्स वेल वेयर एल्स जो है इंडियन कल्चर जो है बिल्कुल बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से बिल्कुल मनाया जा रहा है। गंगा आरती होने वाली है, कहाँ होने वाली है आप जान के हैरान हो जाएंगे। इट इज ऑफ कोर्स इंडिया में तो होती है बट कहीं बाहर गंगा आरती होने वाली है। आई मीन इट्स जस्ट अनबिलीवेबल बट लेट मी कम बैक एंड टेल यू मोर अबाउट इट। गुड इवनिंग।

0: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं
1: one's more.
0: और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं. Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
0: Aamir Khan wondered.
3: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
4: कैसे किया ये?
0: R. Madhavan said.
5: Awesome. You're very good, yeah. Very well done.
0: And Boman Irani?
6: I say this with great respect. This is actually blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल. कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
7: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhan.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
8: How do you know these things? Stop reading my mind.
9: गाना बजते ही नाचना जरूरी है. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. यू से वी प्ले.
10: 6:00 हो चुके हैं 17 मिनट. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं अंतरा आपके साथ एंड चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. भाई रिक्वेस्ट जो है कोई गाना अगर अपना पसंदीदा सुनना हो तो 9158963 पर बिल्कुल भेज दे अपनी रिक्वेस्ट. अपार्ट फ्रॉम ऑल द पिक्चर्स आई एम गेटिंग टू एक्चुअली एंजॉय एंड सी ऑफ देन एंड नाउ. इतना मतलब अपनी तो देखने में मजा आता है, दूसरों की भी देखने में इतना ही नॉस्टैल्जिया फील होता है जितना कि अपने साथ होता है. बट एनीवेज कमिंग बैक टू मैं आपको जो खबर बताने वाली थी एंड एक्चुअली मैं जब मैंने इसके बारे में पढ़ा माय फर्स्ट रिएक्शन वाज लाइक वेट गंगा आरती वो भी थेम्स रिवर पर लंदन क्या चल रहा है ये. सो वेल बात तो सच है. 13 सितंबर 2026 को लंदन के हिस्टोरिक रॉयल नेवल कॉलेज ग्रीनविच में गंगा आरती ऑन द थीम्स ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एंड वहां के जो चिन्मय मिशन यूके हैं वहां पे वो करने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फेस्टिविटी विद इंडियन फूड एंड कम्युनिटी स्टॉल्स और ये सारी चीजें तो होंगी. सो ऑर्गेनाइजर्स जो है वो बेसिकली दो एंशियंट रिवर्स का मीटिंग थ्रू वन सिम्बॉलिक सेरेमनी के उसमें इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. गंगा एंड थेम्स दोनों रिवर्स जिन्होंने अपने अपने सिविलाइजेशंस और कल्चर्स को शेप किया है. सो और एक और क्लारिफिकेशन दे रहे हैं ये लोग कि इसका मतलब ये नहीं है कि थेम्स को लिटरली गंगा बना दिया जाएगा. एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए फ्लावर्स एंड आइडल्स या सेरेमोनियल जो ऑफरिंग्स है थेम्स में इमर्स नहीं किए जाएंगे. सो इंटरेस्टिंगली रिस्पॉन्स इतना ह्यूज है कि जो पहले अपेरेंटली इन्होंने फ्री रजिस्ट्रेशन के साथ शुरू किया था अब इट इज लाइक भाई वेटिंग लिस्ट भी उसके बाहर जा चुकी है. सो कल्चर ट्रैवलिंग अक्रॉस बॉर्डर्स ब्यूटिफुल रिप्रेजेंटेशन डेफिनेटली. ये आप सोच रहे हैं या फिर आप कहेंगे कि यू नो गंगा आरती का असली एसेंस गंगा के घाटों पर ही है. बताइए गंगा आरती ऑन थीम्स ब्यूटीफुल कल्चरल ब्रिज या फिर अ लिटिल टू अनयूजुअल फॉर यू. लेट मी नो 9158963 पर आई एम वेटिंग. ओहो हो सलमा आ चुकी है. निकिता आ चुकी है कह रही है कि बताओ अब मैं तुम्हारी सारी कहानियां सुनने को तैयार हूँ. ठीक है भाई थोड़ा सा स्लीव भी फोल्ड कर लिया जाए बताएंगे जरूर लेकिन फिलहाल अगला गाना गंगा के नाम.

0: मैं चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तुम्हें बता रही हूँ। पर क्यों? क्योंकि ये देखो #you #out #her और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
1: उसे पुतली से पहले उसे बता के तो जा।
0: क्या

हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मस्ती वॉइस आपकी जॉइस में वक्त हो चला है कि आपको बताया जाए कि सिंगापुर के सड़कों का हालचाल फिलहाल क्या कहता है। 6:26 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको इस वक्त मिलेगा KJE टूवर्ड्स BKE आफ्टर BKE वुडलैंड्स। व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर ऑन SLE टूवर्ड्स BKE आफ्टर TPE, अवॉइड करें लेन नंबर 1। और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन PIE टूवर्ड्स जिसमास बिटवीन BKE एंड थॉमसन रोड। सो वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। और यहाँ पे नंदा जी जो है वो ज्वाइन मतलब ट्यून इन कर चुकी है, एंड आते ही उनका बहुत ही प्यारा सा एक रिक्वेस्ट आया है। सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग जिसके लास्ट में आता है टन टन टंग टन टन टन टन टन टन टन। इसमें भी इतना नॉस्टैल्जिया है कि हमें बिल्कुल अच्छा लगता है। गाना फ्रॉम द मूवी शेरशाह। नंदा जी, दिस इज आपकी चॉइस ऑफ गाना ऑन रेडियो मस्ती 24/7। गुड इवनिंग।

0: शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
2: माइकी डन है मम्मा।
3: ड्यूटी
4: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: हिट्स आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले।
1: भाई चॉइस होती है अपनी अपनी, और जब हम जाते हैं वेकेशन पे तो चलना भी हमारी खुद की चॉइस होती है, ठीक है। ऐसे हमसे यहाँ पे जिम में इंक्लाइन वॉक करा लो विद इन 5 to 10 minutes, ऐसे हाफते हुए में ऐसे वाली हालत हो जाती है। लेकिन वेकेशन में पता नहीं कौन से पहिया लग जाते हैं पैर में, कितना कोई अप हिल डाउन हिल ये वो, मतलब रोज स्टेप टारगेट एक्सीड हो रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कैसे हो जाता है ये भी तो एक मैजिक ही तो है ना दोस्तों। रेडियो मस्ती 24/7 में अंतर आपके साथ मस्ती वॉइस आपकी चॉइस जो है बहुत चल रहा है भाई। जैसे कि ये एक फैक्ट है, एक और फैक्ट ये भी है, जैसे कि ये कह रहे हैं कि सिंगापुर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज रैंक्ड नंबर 1 ग्लोबली इन एन इंडेक्स। आई मीन ये कोई पूछने वाली बात है, फैक्ट नहीं है ये। मैं तो हमेशा से कहती हूँ, हर बार कहती हूँ और बार बार मुझे कहने पे बहुत फक्र भी महसूस होता है, भाई हमारे सिंगापुर से बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो आपने कहीं देखा ही नहीं होगा। इतना इजी, इतना मतलब आप मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ में आ जाता है। और 8.8 to 8.B पहुंचने में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सो वेल, ये बिल्कुल अर्बन मोबिलिटी रेडिनेस इंडेक्स की मैं बात कर रही हूँ, एंड हियर्स व्हाई सिंगापुर हैज टॉप्ड इन द लिस्ट आउट ऑफ 69 ग्लोबल सिटीज। सो मैसिव एक्सपेंशंस, एडिंग 223 माइल्स ऑफ न्यू रेल बाय द अर्ली ऑफ 2030s, एक्सट्रीम एक्सेसिबिलिटी इन द गोल जो है ऑफ 80% ऑफ हाउसहोल्ड्स टू बी विद इन अ 10-minute वॉक टू अ स्टेशन। सुन रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? Oh my God. And high trust. Commuter का ridership has rebounded to 93.5% of pre-pandemic levels. But I mean, a few occasional शायद बीच में MRT breakdowns and fare hikes. कुछ भी कर लो, ईस्ट और वेस्ट सिंगापुर का ट्रांसपोर्ट इज द बेस्ट। देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो इन विच सिंगापुर टॉप्स, बट इसमें ये वाले ये रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं थी यार, हमसे पूछ लेते। इसे पूछा तो है तभी तो इनको पता चला है, करेक्ट। कोई नहीं, मैं कह रही हूं ना वो मैं आ गई हूं और अंतरा आत्मा जो है ना वो वेकेशन से भी लौट रही है, शी विल कम बैक। हालांकि आए हुए मुझे काफी दिन हो गए, लेकिन फिर भी आई एम ऑन माई वे, डोंट वरी, लेट्स गो। प्ले करते हैं श्रेया आपका गाना फ्रॉम द मूवी दिलवाले, दिस इज सच अ रोमांटिक वन, अरिजीत सिंह की आवाज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। गुड इवनिंग, और कहीं मत जाओ, कॉन्टेस्ट खेलेंगे, मैजिक करेंगे, और क्या पता मैजिक करते करते आपके पास कुछ जीतने को मिल जाए।

0: हाँ, तुम ही डीजे, तुम ही हो। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो।
1: जादू चाहे कभी भी देख लो, बचपन में आपने जादू देखा हो या करंटली आपने कभी भी इस तरह की कोई चीज देखी हो जिसको देख के कहो कि यार ये कैसे कर लिया इसने। सो आई मीन एक्साइटमेंट तो उतना ही रहना चाहिए, नहीं क्योंकि वी ऑल बिलोंग टू दोज टाइम्स, इजंट इट? एंड दिस इज द टाइम टू बी स्पेल बाउंड। रेडियो मस्ती 24/7 अंतराप के साथ यहाँ पर मस्ती वॉइस आपकी चॉइस बिल्कुल चल रहा है। और 20 सितंबर की चॉइस संडे वाले दिन आपके होनी चाहिए ये कमाल की ये जो शो लेकर आ रही है सुहानी शाह। शी इज गोइंग टू बी इन सिंगापुर and she's going to do a live show over here. I mean, मेरी excitement आप मेरी हंसी में सुन पा रहे होगे। I have seen a lot of her, you know, videos वगैरह देखा हुआ है and you know कुछ भी आप कह लो ठीक है तो बहुत ही cool चीज नहीं। एंड आई डोंट नो, सी क्यूरियोसिटी तो है कि कैसे वो कर लेती है और कैसे वो जान लेती है और कैसे वो पहचान लेती है। शी हैज मेट एंड डन ऑल ऑफ दीज थिंग्स विद सो मेनी सेलिब्रिटीज, चाहे वो आमिर खान हो, सलमान खान, एवरीबॉडी वॉज अमेज्ड। क्रिकेट टीम के साथ भी उन्होंने किया हुआ है एंड लाइक हाउ, आई मीन ये कैसे। एंड कभी कभी कुछ ऐसी चीज है कि इसका नाम क्या मैं जान सकती हूँ बाई एनी चांस, कि एक बार किसी से किसी के फर्स्ट क्रश का जो है ना नाम पूछ लिया था, अब बताओ फर्स्ट क्रश का नाम इसको कैसे पता होगा। बट समहाउ शी डज ऑल ऑफ दिस। सो एंड शी ऑल्सो सेज कि जब भी मैजिक का नाम लिया जाए वो नाम सुहानी शाह का वहां पे आना चाहिए। सो सुहानी शाह यहाँ पे आ रही है तो आपको भी जाना चाहिए, है ना। Well, Spellbound live in Singapore, it's going to happen. And bhai, 20 September, Kretaya People's Theatre, that's where this is going to happen. Ek bahut hi kamal ka shandar jo hai code, main aapko promo code de sakti hu while you are booking your tickets on Sistic, use this. And yes, aapko thoda bahut to, of course, hamare saath jude ho to benefit to milna chahiye. SSA21. Agar aap ye code bhool bhi gaye to tension nahi lene ka, aap seedha hamara jo social media ke पेजेस है फेसबुक और इंस्टाग्राम वहां जाकर भी बिल्कुल देख सकते हैं। वहां पे हमने जो पोस्ट किया हुआ है वहां पर भी ये प्रोमो कोड दिया हुआ है। बट उसी के साथ साथ हमने कहा है कि आपके आंसर्स का मैजिक भी जो है वो भी पता चलना चाहिए हमें। सो टेल मी, द क्वेश्चन इज अत्यंत सिंपल, है ना, ये मैजिक तो आपसे हो जाना चाहिए फॉर श्योर। सुहानी शाह इज अ फेमस ए मेंटलिस्ट, बी सिंगर, सी डांसर। सुहानी शाह फेमस किस बात के लिए है? ए मेंटलिस्ट, बी सिंगर, सी डांसर। तो आपके जवाब ए बी या सी, किसको चूज करना चाहेंगे आप? अरे अंतरा क्या मजाक कर रही हूँ, मजाक नहीं, जादू है ये, जादू। आप देखना सही आंसर ही निकलेगा आपके पास से, ये भी तो जादू है। पर उसके बाद क्या जादू होगा वो तो वो जादू आप यूनिवर्स में छोड़ दे नहीं। सो वेल, गो ग्रैब यू टिकट्स राइट अवे, यू कांट मिस दिस मौका यार। हम लोग इतने शिद्दत से आपको ये सारे अनमोल मौके देते हैं और बताते हैं तो उसका रीजन यही होता है कि यू शुड नॉट मिस दीज अपॉर्चुनिटीज, इजंट इट? फिलहाल इलाही मेरा जी आया कि अगला गाना बज जाए। गुड इवनिंग। ओ बाय द वे, उसी के साथ साथ इनको लाने वालों को भी तो थैंक यू बोलना चाहिए ना। वंडरफुल एस्केप्स एंड एपिक एनकाउंटर्स, थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग सुहानी शाह लाइव इन सिंगापुर। आई थिंक आई एम गोना गेट स्पेल बाउंड फॉर श्योर।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: बाइकी डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
5: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो
1: भाई बहुत सारा जो है मामला कहते हैं ना रायता फैलता हुआ जा रहा है. लेट्स टॉक अबाउट इट. वेलकम बैक 7 बजे के उस पार अभी सभी का स्वागत है रेडियो मस्ती 24/7. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस चल रही है भाई. जिंदगी में सब लोग अपनी अलग अलग तरीके की चॉइसेस किए हुए जा रहे हैं. लेट अस पुट सम एंड शेड सम लाइट ओवर द सुनीता आहूजा एंड चीची यानी कि गोविंदा. अब जब इनका मैटर देखो काफी सारा पब्लिक हो ही गया है. एवरीबडी इज काइंड ऑफ टॉकिंग अबाउट इट. तो जब गोलाबारी एक तरफ से होती है फिर दूसरी तरफ से उसका जो है रिएक्शन आता है तो ये सारी चीजें एक साथ होती रहती है. तो हम भी उसके बीच में जो है वी आर जस्ट डिस्कसिंग, वी आर जस्ट पुटिंग इट ऑन द टेबल. बाकी तो जो होगा वो तो पता ही चल जाएगा जब भी. सो रिसेंटली सुनीता आहूजा जो है वो कोर्ट से निकलते फैमिली कोर्ट से निकलती हुई दिखी अपने बेटे के साथ. सो रिपोर्ट्स की मानी जाए वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने एक केस फाइल किया हुआ था जो उन्होंने वापस ले लिया. नाउ हाउ दे कंफर्म्ड दिस पैपराजी आई टेल यू द पैप्स आर द न्यू इस जनरेशन के आई थिंक रिपोर्टर वाले वो सारे काम वो कर रहे हैं. सो दे वर देयर राखी सावंत के किसी इवेंट में जो है वहां पे राखी सावंत वाज टॉकिंग ऑन फोन. अब नाउ राखी सावंत इज आल्सो अनदर कैरेक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. इतने सारे जब उनको दिख रहा है कि लोग हैं दिस इज देयर टाइम टू गेट ऑल द स्पॉटलाइट ऑन हरसेल्फ शी कॉल्ड सुनीता आहूजा. फोन को स्पीकर पे रख के उन पैप्स के सामने बात कर रही है एंड शी इज गिविंग हर एडवाइस कि नहीं नहीं तूने बहुत अच्छा किया कि तूने केस वापस ले लिया. पहले जितना भी पैसा है वो अपने नाम कर ले, वो कर ले उसके बाद ही. एंड एक्चुअली में सुनीता आहूजा लाइन पे दूसरी तरफ थी एंड शी वाज हर्ड सेइंग समथिंग लाइक कि नहीं नहीं मैंने तो अभी वापस ले लिया, ये आदमी तो नई शादी करने को तैयार बैठा था. एंड द होल इंटरनेट वेंट कि व्हाट एक मिनट व्हाट. सो वेल एनीवेज ये है पूरा का पूरा मुद्दा अभी बाहर एंड दिस इज व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट कि जब गोविंदा एयरपोर्ट पे एक लड़की के साथ जो है फ्लाई करते हुए क्लिक हुए. सो एवरीबडी वाज लाइक कौन है ये. एंड देन सुनीता आहूजा रिएक्टेड एंड ऑल ऑफ दिस. काफी टेंशन फिलहाल चल रही है. सो वेल देखते हैं आगे आगे होता है क्या, क्योंकि हमें भी सब ऐसे ही पता चल रहा है लाइक बाहर खुले में. सो या ऑल द बेस्ट टू देम. दो आई हैव अ वेरी पर्सनल ओपिनियन अबाउट दिस जो कि मैं अगर आप पूछोगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे जरूर जवाब दे दूंगी, यहाँ पे नहीं दूंगी क्योंकि हो सकता है किसी को बुरा लग जाए मेरी बात का. वेल इसी बात के साथ मैं वो गाना प्ले करती हूँ जो फिलहाल मेरी आत्मा कह रही है कि किचन से आवाज चिकन कुकड़ू भूख लगी, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए आफ्टर माई हॉलीडे. मेरे को ना 4-5 दिन का व्रत रखना चाहिए लाइक टेक्निकली, बट पॉसिबल नहीं है. गुड इवनिंग.
2: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी.

मस्ती बॉयज आपकी चॉइस एंड बिफोर वी गेट इनटू द कॉन्टेस्ट मोड अगेन ये खबर सुनते जाइए भाई मुझे नहीं लगता कि कब रेस्ट कब करते हैं अक्षय कुमार इतने सारे प्रोजेक्ट्स कुछ ना कुछ और वो मतलब ही इज काइंड ऑफ जस्ट प्रूविंग एवरी सिंगल लाइन व्हिच ही हैड सेड कि 365 डेज में मैं 365 डेज काम करना चाहता हूँ सर बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. अक्षय कुमार हैज ऑफिशियली गॉन इनटू द एलियन वाला टेरिटरी एज वेल नाउ ही हैज बिगन शूटिंग फॉर दिस मच अवेटेड सर्वाइवल एक्शन थ्रिलर सामुक नाम है इसका एंड इट्स मार्किंग द रियूनियन ऑफ हिम एंड प्रोड्यूसर फिल्म मेकर विपुल अमृतलाल शाह. आई थिंक इनका सेवेंथ कोलैबोरेशन है. दिस मूवी इज गोइंग टू बी डायरेक्टेड बाय कनिष्क वर्मा. द फिल्म हैज ऑलरेडी गॉन ऑन द फ्लोर्स इन लंडन एंड इज काइंड ऑफ बीइंग mounted as this large scale pan india theatrical release global production ke ambitions ke sath aur isme aapko nazar aayega alien lekin kis roop mein nazar aayega wo dekhne wali baat hogi. See, we have seen alien movies, right? We definitely have, but then we have to surpass that. Now, whether with the current scenario in the cinema market, Akshay Kumar ki ye movie wo surpass kar payegi, I think iska jawab jo hai, kahin na kahin deep down inside, my dear friends, aapko bhi pata hai, mujhe bhi pata hai, lekin koi nahi, we are hopeful people. क्या पता. एंड सच्ची में आजकल आज के टाइम का कुछ पता नहीं कौन सी चीज कब क्या कैसे क्यों क्लिक हो जाती है और वो वायरल क्यों हो रही है. हम भी एट टाइम्स वी आर अमेज्ड कि था क्या था भी कि नहीं था ऐसा कुछ था जो हमें नजर नहीं आया. बट वेल इट इज व्हाट इट इज. वी कैन ओनली वेट एंड वॉच एंड गुड ऑन अक्की. आई मीन भाई मेहनत करते जाओ पैसे कमाते जाओ अपनी लाइफ और अपने फैमिली की लाइफ बनाते जाओ और क्या चाहिए इंसान को जिंदगी में. बीच में 2-4-5-6 हॉलीडेज है ना मतलब 6 महीने के 2 भी चलेंगे मतलब उससे. एम आई आस्किंग फॉर मोर. गुड इवनिंग.

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: उफ शान की आवाज, मंडे मंडे शाम, मजा ही आ गया। 7:32 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट कुछ ऐसा है कि व्हीकल ब्रेक डाउन आपको मिलेगा ऑन सीटी टुवर्ड्स एसएलई आफ्टर एएमके एवेन्यू 5, अवॉइड करें लेन नंबर 5, और फिर हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन पीआईई टुवर्ड्स चांगी बिटवीन बिडॉक रिजर्वॉयर रोड एंड केपीई। वेल, इस घंटे का तो ये रहा ट्रैफिक अपडेट। अब देन एंड नाउ का अपडेट, वो तो आपने अपने गैलरी में हंट करके उसके बाद भेज देना है। व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? लेट मी कम बैक आफ्टर दिस गाना एंड आई विल टेल यू। यस, कॉन्टेस्ट खेलेंगे, बोला था ना, और जिताएंगे, आपको मौका देंगे कुछ खास जीतने का, वो भी बोला था। तो जो बोला है वादा तो हम निभाएंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर चॉइस ऑफ मंडे, द बेस्ट वन इन डेट। अगर आप वैसे भी रेडियो मस्ती 24/7 सुन रहे हो, चॉइस तो आपकी बेस्ट है ही ना। गुड इवनिंग।

0: All music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
1: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
2: बाइकी डन है मम्मा।
3: ड्यूटी
4: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
3: मैं उठता था।
1: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति

0: आपके हिट्स, आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
1: You know, whenever I went back to my home and कभी भी मैं अपने भाई के साथ मिली, तो हमने हमेशा ये प्लान किया कि एक कोई ना कोई जो है अपने बचपन की फोटो रिक्रिएट करेंगे। और अभी जब मैं इसकी बात कर रही हूँ देन एंड नाउ की, आपसे बात करते करते मैं भी अपनी गैलरी में गई, मैंने भी देखा एंड आई फाउंड आउट बचपन की फोटो हमारी एंड उसके बाद आज की। कितनी जल्दी बड़े हो गए ना हम, लिटरली ऐसी वाली फीलिंग आई उसको देखकर। दैट्स एग्जैक्टली द काइंड ऑफ फीलिंग वी वांट यू टू फील एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि शायद वो फीलिंग फील करते करते क्या पता यू स्टैंड अ चांस टू विन समथिंग नाइस। रेडियो मस्ती 24/7 में अंतरा आपके साथ, यहाँ पे चल रहा मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। भाई रक्षाबंधन आने वाली है एंड दैट इज व्हाई आई एम गिविंग अ ह्यूज शाउट आउट टू ऑल द सिब्लिंग्स हु आर ट्यून्ड इन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब याद करिए वो कौन सी देन उस टाइम वाली पिक्चर है जो आपके फोन के गैलरी में इंतजार कर रही है आपके देखने का। एंड देन हाल फिलहाल में आपने अपने अगर सिबलिंग के साथ कोई फोटो खींची है, सो या जस्ट सेंड अस दोस देन एंड नाउ की सिबलिंग पिक्चर्स टू अस टू स्टैंड अ चांस टू विन समथिंग वेरी वेरी स्पेशल दिस रक्षाबंधन। यस, ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप इट इज going to be your go-to place, जहां पे आप जाएंगे और सारा सामान एक साथ एक छत के नीचे पाएंगे। I mean, कितना भी कह लो, कितना भी कुछ कर लो, it has been my go-to shop for such a long time. It has been a go-to shop for so many people for so long, right? कि आपने at times ये भी हुआ है कि मेरे घर में कई सारी चीजें और पूजा का सामान और कभी कभी रिपेयर वगैरह का भी कुछ सामान होता है ना, तो आई हैव गॉन बैक टू ज्योति स्टोर्स और मैंने वहां पर जो है अपना ये काम करवाया हुआ है। सो नॉट ओनली दिस, आई थिंक अभी तो गणपति आइडल्स की भी उनके वराइटीज एंड रेंजेस, इफ यू सी दोज, I mean such beautiful idols and the variety they have got over there, you have to go and check them out all by yourself. It is just amazing and beautiful and mesmerizing. Same with the Rakhi, they have so many options. You have to go to one Campbell Lane, Little India mein. Aapko to pata hi hai, Jyoti Store and Flower Shop jo hai, wahin pe hai. एंड गो जस्ट इन केस अगर लास्ट मिनट का कुछ ऐसा थॉट आया कि ओह ये इसका तो रह गया, यहाँ तो भेजना है, सो यू कैन डू दैट ओवर देयर। सो अब विनिंग के लिए तो देन एंड नाउ वाली सिबलिंग फोटो तो भेजनी पड़ेगी एंड आई वी हैव गॉट सो मेनी एंट्रीज इतनी देर में। आपने अगर नहीं भेजा है तो चलिए चलिए आपकी बारी है, गैलरी में जाकर ढूंढ कर बिल्कुल हमें भेज दीजिए 9158963।

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे, तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो।
1: वो फीलिंग पता है आपको कि जब आपको पता है कि आपको सुबह उठ के स्कूल जाना है और स्कूल जाकर आज पढ़नी है डांट, प्रिंसिपल के ऑफिस में वो बुलाएंगे ही बुलाएंगे, तो आप पूरी बहुत सारी एंजाइटी के साथ स्कूल पहुंचते हो। मम्मी पापा से ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, पेट दर्द का बहाना आप बना चुके हो, बट दे आर नॉट फॉलोइंग फॉर इट, सो अल्टीमेटली आपको जाके फेस करना ही पड़ता है। एंड मेरी हालत फिलहाल कुछ ऐसी ही है क्योंकि मुझे अब जाना है, मतलब यहां से शो खत्म करके तो जाना है बट यहां से निकल के जाना है जिम, और आज है वो इम्तिहान की घड़ी जो कि हॉलीडेज के बाद कभी भी नहीं होनी चाहिए। जब कि वहां पे पहुंचते ही जो है हमारे ट्रेनर जो है वो पूछेंगे कि खड़े हो जाओ बेटा, जरा देखें क्या गुल खिला के आई हो। कुछ ज्यादा ही खिल गई हूं मैं बहुत ज्यादा खिला के और खुद को भी खिला के, या कुछ ऐसा माजरा हो गया है। सो आई नो पढ़ने वाली है झाड़ बट कांट हेल्प इट, अब जो है वो है, कर लेंगे यार, मेहनत कर लेंगे वापस से, ठीक है ना। वेकेशन पे तो ये सब चलता है, अलाउड होना चाहिए, लेकिन ZNMD डुबरो है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। I am kind of convincing myself and preparing myself mentally. आपसे कल सुबह मुलाकात होगी, बाकी की जो है बातें और क्या हुआ कैसा हुआ सब कुछ मैं आपको कल अपडेट दूंगी, क्योंकि ट्यूजडे मॉर्निंग है, ट्यूजडे मॉर्निंग को भी अंतराप के यहाँ पर टन करके हाजिर हो जाती है। सो वेल, आज के दोनों कॉन्टेस्ट इट्स स्टिल ओपन, कल सुबह भी अपन खेलेंगे सेम टू सेम, चाहे वो स्पेल बाउंड विद सुहानी शाह हो, और उसके अगर जो है आपको वहां से जीतना है तो आप जा सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे, वी हैव पोस्टेड समथिंग, वी हैव पोस्टेड अ वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट गो एंड आंसर ओवर देयर सो दैट यू गेट अ चांस एंड स्टैंड अ चांस टू विन समथिंग बिग। एंड ये दूसरा है ज्योति स्टोर्स का देन एंड नाउ सिबलिंग वाला बॉन्ड जो है फोटोग्राफ्स के जरिए आपको करना है फ्लैक्स। बहुत सारे हमारे पास बात करते करते एंट्री आ चुके हैं, थोड़े और बाकी हैं तो वो आप भेज देना अगर आपने अभी तक नहीं भेजे हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, यू हैव अ फैंटास्टिक इवनिंग अहेड, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं 7 बजे।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। मैं हूँ समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेकर हाजिर हूँ लेजेंड्स फिर से। और आज हम जिनकी बात करने वाले हैं उनके बारे में आपसे एक सवाल। हालांकि हमारे फेसबुक पेज पर लिख दिया गया है कि आज कौन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग अपडेटेड नहीं है उनसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ। एक गाना है राज कपूर साहब का, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा बिन भी मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा हाय अल्लाह। और एक गाना है जिसने शशि कपूर को पहचान दिलाई, परदेसियों से ना आंखियां मिलाना। और एक गाना है जिसने मनोज कुमार साहब को भारत कुमार बना दिया, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। इन तीनों में कॉमन बात क्या है, बताइए बताइए। हाँ नहीं, वो माना कि तीनों ही गाने कमाल के हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक और चीज है जो तीनों को और ज्यादा खूबसूरत बनाती है, बल्कि मैं कहता हूँ बनाती है। सोचिए सोचिए, हालांकि हिंट दे चुका हूं मैं। यू गेस इट राइट, अगर आपने गेस किया है तो इन तीनों ही गानों को कंपोज किया है कल्याण जी वीर जी शाह और आनंद जी वीर जी शाह ने। तो सिंगापुर आज यही हैं हमारे लेजेंड्स, जिन्हें हम प्यार से कल्याण जी आनंद जी कहते हैं।

एक ऐसी संगीत की जोड़ी जिन्होंने हिट नहीं सिर्फ सुपर हिट म्यूजिक दिया। जब तक इन्होंने काम किया हर साल एक से बढ़कर एक म्यूजिक इन्होंने दिया। तो सिंगापुर आज का शो इन्हीं के नाम। आज तो बरसात होने वाली है बहुत ही उम्दा गानों की, तो आप भीगने के लिए तैयार रहिए। छाता वाता मत खोलिएगा, अपने आप को भीग जाने दीजिएगा और मस्ती अगर चढ़ जाए माहौल में आ जाए तो नाच लीजिएगा, गा लीजिएगा, गुनगुना लीजिएगा और सुनते रहिएगा सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, जहां से मैं हूं आपसे मुखातिब। मेरा नाम है समर, मिलता हूं इन गानों के पार। स्टे कनेक्टेड।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति.com.sg।

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मेरे यानी समर के साथ। और आज हमारे साथ हैं एक म्यूजिकल जोड़ी, कल्याण जी आनंद जी। कल्याण जी बड़े भाई हैं और आनंद जी छोटे। 30 जून 1928 को कल्याण जी भाई का जन्म हुआ और 2 मार्च 1933 को आनंद जी भाई का जन्म हुआ गुजरात के कच्छ में। तो कुल मिलाकर दोनों में 5 साल का डिफरेंस है, यानी ये पैदाइशी तो गुजराती थे लेकिन जब ये छोटे थे, मतलब महज उस वक्त इनकी उम्र होगी 7 साल, तब इनकी फैमिली मुंबई आ गई अपने बिजनेस के सिलसिले में, उसको बढ़ाने के लिए। ग्रोसरी का बिजनेस हुआ करता था इनका खानदानी। मुंबई में जहाँ ये रहते थे गोरेगांव में, वहाँ काफी सारे म्यूजिक स्टूडियोज हुआ करते थे, तो ये वहाँ जाने लग गए और म्यूजिक का शौक इन्हें चढ़ गया। अच्छा, कल्याण जी का रुझान तो शुरू से ही म्यूजिक की तरफ था, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स वो बजाया करते थे। लेकिन आनंद जी भाई एक्टर बनना चाहते थे। पहले तो आपको एक और बात बताऊं, जब ये स्टूडियोज में जाते थे तो छोटा मोटा कोई रोल इन्हें भी मिल जाता था स्कूल के जमाने में। तो ये क्या करते थे कि जो मेकअप होता था ना उसे धोते नहीं थे और स्कूल के ड्रेस की कॉलर पर थोड़ा सा मेकअप अपने चेहरे से लगा लिया करते थे। और जब स्कूल जाते तो फ्रेंड्स पूछ ही लेते थे कि ये चेहरे पर क्या लगाए, और अगर नहीं पूछते थे तो ये खुद उनसे बोलते थे कि यार ये शर्ट की कॉलर पर कुछ लगा तो नहीं है, देखना। और जब लड़के पूछते कि ये क्या लगा है तो आनंद जी बोलते, अरे यार कुछ नहीं, बस वो कल शूटिंग पर गए थे ना तो थोड़ा मेकअप लगा रह गया हुआ। आप खुद सुन लीजिए क्या कहते हैं ये।
2: तो क्या करते थे हम लोग, मेकअप लगा के कल स्कूल में पहनने उस शर्ट को लगा देते थे और फिर जाके स्कूल में गए हुए तो बार बार यूं कॉलर करो तो कोई पूछे नहीं, तो फिर बोलेंगे यहाँ दाग है क्या, कोई खुद ही पूछे तो बोले क्या है, तो बोले कि ये दाग काय का है, बोले शूटिंग में गया था, शूटिंग में पिक्चर की, बोले हाँ। तो यूं करते करते मैंने अपने टीचर थे उनको भी लपेट लिया ताकि छुट्टियां भी मिल जाए।
1: कमाल के इंसान है आनंद जी भाई। भाई ये बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। खैर, सिंगापुर अभी वक्त हो चला है गाने सुनने का और गानों के उस पार हम बात करेंगे कि किस धुन ने कल्याण जी को पहचान दिलाई एक म्यूजिक आर्टिस्ट के रूप में। सुनते रहिए रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से। मैं हूँ समर, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में उस पार।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: आइए आइए आइए, मैंने कहा था ना मिलता हूँ आपसे उस बार, मैं यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से, मेरा नाम है समर और आज हम बात कर रहे हैं एक नहीं बल्कि दो दो कमाल के संगीतकारों की, एक संगीतकार जोड़ी की, कल्याण जी आनंद जी की। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा उस धुन के बारे में जिसने कल्याण जी को पहचान दिलाई। शुरू शुरू में कई फिल्मों में कल्याण जी ने इंस्ट्रूमेंट्स बजाए लेकिन कोई बात बन नहीं रही थी। लेकिन 1953 में एक फिल्म आई नाग पंचमी जिसमें कल्याण जी ने पुंगी से एक धुन बजाई जो ये थी। इस फिल्म की रिलीज के बाद ये धुन काफी म्यूजिक कंपोजर्स को बहुत अच्छी लगी, खास करके हेमंत कुमार साहब को। 1954 में एक फिल्म बन रही थी नागिन, इसका म्यूजिक हेमंत कुमार साहब दे रहे थे, तो अब नागिन में बीन की धुन तो बजेगी ही ना। तो हेमंत दा को कल्याण जी का ख्याल आया और वो तुरंत उनके पास पहुंच गए। कल्याण जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि यार कल्याण भाई देखो, मैं एक फिल्म में म्यूजिक दे रहा हूं जिसमें मुझे आपकी वो बीन वाली जो धुन थी ना जो आपने नाग पंचमी में बजाई थी वैसी कुछ चाहिए। कल्याण जी ने कहा क्यों नहीं, जरूर बजाएंगे। लेकिन क्योंकि कल्याण जी तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में माहिर थे तो उन्होंने कहा कि देखिए एक नया इंस्ट्रूमेंट आया है तो मैं उससे आपको वही धुन निकाल कर दे दूंगा, बल्कि इसमें ज्यादा स्वर अच्छे से आ सकते हैं तो अच्छी ट्यून बन जाएगी। तो हेमंत दा ने कहा देखो भाई मैं तो जानता नहीं हूँ, अगर तुम कह रहे हो कि अच्छी धुन निकल जाएगी तो निकल जाएगी, ठीक है बजा दो, उसी से बजा दो। तो उन्होंने एक नया इंस्ट्रूमेंट क्लेवलिन से ये धुन निकाली और क्या निकाली, लोग आज भी उनकी धुन पर बल खाते हैं, नाचते हैं जब ये गाना बजता है। कल्याण जी की बनाई ये धुन सुपर डुपर हिट रही और आज भी हिट है। आज भी नागिन का कहीं भी जिक्र होता है तो यही धुन बजती है और कल्याण जी इसी धुन के साथ सबकी नजरों में आ गए। लेकिन अब तक सिर्फ कल्याण जी वीर जी शाह थे अकेले, तो इन अकेले कल्याण जी वीर जी शाह से कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी कैसे बनी, बात करेंगे इन नगमों के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से, मैं हूं समर आपके साथ।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी समर के साथ। वैसे आपको हमारा ये प्रोग्राम, ये शो कैसा लग रहा है आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर आकर। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि कल्याण जी वीर जी शाह से कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी कैसे बनी। हुआ दरअसल यूं कि आनंद जी जो इनके छोटे भाई थे वो इनको असिस्ट किया करते थे। जब ये नागिन की धुन बजा रहे थे तब भी आनंद जी इनके साथ में थे, लेकिन नागिन की धुन हिट होने के बाद डायरेक्टर सुभाष देसाई ने कल्याण जी से कहा कि यार तुम सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हो, फिल्मों में म्यूजिक क्यों नहीं देते, मैं तुम्हें साइन करता हूँ। सिंगापुर कल्याण जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सुभाष देसाई का 11 नंबर लकी नंबर था, इसलिए उन्होंने मुझे पहली बार ही 11 फिल्में एक साथ साइन करवा ली। 11 फिल्में, कैन यू बिलीव दिस। बहरहाल 1959 में फिल्म आई सम्राट चंद्रगुप्त, जिसमें भारत भूषण और निरूपा रॉय थे। ये पहली फिल्म थी जिसमें कल्याण जी वीर जी शाह ने म्यूजिक दिया। कल्याण जी वीर जी शाह ने अभी भी, हाँ अच्छा, म्यूजिक तो ठीक था, अच्छा था, एक गाना हिट भी था इसका, ये वाला।
2: चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो।
1: लेकिन इसके बाद इन्होंने सुनील दत्त की पोस्ट बॉक्स 999 में म्यूजिक दिया। हालांकि इस दरमियान आनंद जी इनको असिस्ट करते रहे, तो कल्याण जी को लगा कि यार क्यों ना दोनों के नाम से म्यूजिक दिया जाए, हेल्प तो कर ही रहा है मेरी। बहरहाल 1959 में ही रविंद्र देव के डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म सट्टा बाजार आई, जिसमें पहली बार कल्याण जी वीर जी शाह और आनंद जी वीर जी शाह ने म्यूजिक दिया। इसके बाद इसी साल इन्होंने एक और फिल्म करी मदारी, लेकिन इन दोनों फिल्मों का म्यूजिक एवरेज था, मतलब यूं कह सकते हैं कि ठीक ठाक था। दोनों को इंतजार था एक हिट फिल्म का, तो वो कौन सी फिल्म थी जिसने कल्याण जी वीर जी शाह और आनंद जी वीर जी शाह को कल्याण जी आनंद जी बनाया, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। उन्होंने इतने कमाल के गाने कंपोज किए कि मेरा मन कर रहा है कि पहले आप इन्हें सुन लीजिए। ये कहानी जारी रहेगी रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, इसलिए यहीं आइएगा लौट कर, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ।

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: स्वागत आप सभी का इस शो में जिसका नाम है लेजेंड्स। फिर से मेरा नाम है समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव से आपसे मुखातिब हूं। और आज हम बात कर रहे हैं कल्याण जानन जी की। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुभाष देसाई साहब ने कल्याण जी आनंद जी से साइन करवा ली 11 फिल्में। तो 1961 में उन्होंने एक फिल्म बनाई, फिल्म का नाम था छलिया। राज साहब और नूतन जी इस फिल्म में थे। एक और खास बात, मनमोहन देसाई जो सुभाष देसाई के छोटे भाई थे उनसे ये फिल्म डायरेक्ट करवाई गई। सुभाष देसाई ने कल्याण जी से कहा कि भाई देखो ऐसा है, ये नाम थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो रहा है, कल्याण जी वीर जी शाह, आनंद जी वीर जी शाह, इसे कुछ छोटा करो, जम नहीं रहा है कुछ। तो कल्याण जी बोले आप ही बता दीजिए क्या करना है। तो उन्होंने कहा ये जो वीर जी शाह है ना इसको हटा दो, खाली कल्याण जी आनंद जी रहने दो। कल्याण जी ने कहा चलिए ठीक है आप कहते हैं तो ऐसा कर लेते हैं। बहरहाल कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक इस फिल्म में सुपर हिट हो गया और इस फिल्म ने दोनों का करियर ही बदल दिया। एक एक गाने ने इस फिल्म के धूम मचाई।

इनने यहाँ से स्पीड पकड़ ली और ये तब तक चली जब तक उन्होंने खुद म्यूजिक देना बंद नहीं किया। अभी वक्त है गाने सुनने का और गानों के बाद हम बात करेंगे कि फूल तुम्हें भेजा है खत में ये गाना कैसे बना, इसका ख्याल किसको आया और क्या क्या हुआ, इस गाने की सारी कहानी आपको बताऊंगा ब्रेक के पार। इसलिए सुनते रहिए रेडियो मैसेज 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
2: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
4: स्वागत स्वागत स्वागत रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत सिंगापुर। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी समर के साथ। आज हम म्यूजिक डायरेक्टर डुओ कल्याण जी आनंद जी की बातें कर रहे हैं। सिंगापुर कल्याण जी आनंद जी एक ऐसे बैकग्राउंड से थे जहां संगीत के बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे, सोचते भी नहीं थे। ये दोनों अपने माता पिता को धन्यवाद देते हैं हमेशा कि आज हम जो भी हैं अपने माता पिता की वजह से हैं। उन्होंने हमें म्यूजिक सीखने की छूट दी, हम जो करना चाहते थे हमें करने दिया। अगर आप इनकी किसी भी फिल्म के गाने सुनेंगे, कोई भी एल्बम उठा लीजिए जिसमें कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक हो, तो कम से कम दो गाने तो आपको हिट मिलेंगे ही मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने कसम खाई थी कि हम हिट नहीं सुपर हिट म्यूजिक ही देंगे। और फिर कल्याण जी तो कहते भी थे कि किसी भी काम में ट्यूनिंग होना बहुत जरूरी है, उससे काम आसान हो जाता है और काम करने में मजा भी आता है। कुछ ऐसा ही हुआ फिल्म सरस्वती चंद्र के दौरान भी। हुआ यूं कि कल्याण जी आनंद जी के किसी फैन ने इनको एक गिफ्ट भेजा। गिफ्ट में एक लेटर था और लेटर में एक फूल और लिपस्टिक बनी हुई थी, मतलब ऐसे जैसे किसी ने लेटर को किस करके भेजा हो। तो वो जो लिपस्टिक थी वो छप गई थी अंदर। आनंद जी ने देखा और कल्याण जी से कहा कि भाई साहब देखो आपके किसी फैन ने ही भेजा है। अब कल्याण जी ठहरे थोड़े शर्मीले मिजाज के, तो उन्होंने कहा कि यार ये क्या बकवास है। वहीं लिरिक्स राइटर इंदीवर भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि यार ये चीज तुम्हारे काम की नहीं है, तुम बनिए लोग हो, तुम समझोगे नहीं, ये मेरे काम की, लाओ। इससे तो गाने का मुखड़ा बन गया यार। कल्याण जी ने कहा मुखड़ा, इससे गाने का मुखड़ा कैसे बनेगा भाई। तो इंदीवर जी ने उसी वक्त उन्हें कहा कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, बन गया ना। और सिंगापुर इसी मुखड़े को लेकर ये सुपरहिट गाना इन्होंने बना दिया। और सबसे खास बात, इस फिल्म के म्यूजिक के लिए कल्याण जी आनंद जी को बेस्ट म्यूजिक कंपोजर का नेशनल अवार्ड भी मिला। तो इस नेशनल अवार्ड की खुशी में आपके लिए ये गाने सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। इन्हें सुनिए, मस्त रहिए और मस्ती की ये डोज लेने के लिए वापस लौटे, क्योंकि लेजेंड्स का ये सफर अभी जारी है। कल्याण जी आनंद जी की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी।

जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो खुश नहीं बोलेगा।

0: बोलेगा तो
1: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
2: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर

0: सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं मेरे यानी समर के साथ रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से। और आज मैं यहाँ कल्याण जानन जी की फिल्मों की बातें कर रहा हूँ, उनके किस्से सुना रहा हूँ। ऑफ कोर्स उनके बेहतरीन नगमे तो हैं। सिंगापुर कल्याण जी उस जमाने में आए जब बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स अपनी पैठ जमा चुके थे, चाहे वो शंकर जयकिशन हो, नौशाद साहब हो, एसडी बर्मनदा हो। और कमाल की बात तो यह है कि एसडी बर्मन साहब इन दोनों के, कल्याण जी आनंद जी के फेवरेट म्यूजिक कंपोजर थे, जिनको ये अपना आदर्श मानते थे। और उसी टाइम कुछ नए डायरेक्टर्स भी आ रहे थे जिनको म्यूजिक कंपोजर्स चाहिए थे, जैसे मनमोहन देसाई। आनंद जी कहते हैं कि नए फिल्म डायरेक्टर्स इसलिए नए म्यूजिक कंपोजर्स को ढूंढ रहे थे क्योंकि जो सीनियर हो चुके थे उनसे फ्रेंडली वो काम नहीं ले पाते थे। और इसीलिए आप देखेंगे कि कल्याण जी आनंद जी ने कई उन नए डायरेक्टर्स के साथ काम किया जो पहली बार भी फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। छलिया में तो मनमोहन देसाई के लिए हिट म्यूजिक दिया ही। मनोज कुमार की भी पहली फिल्म जो उन्होंने डायरेक्ट की उपकार, उसके लिए भी म्यूजिक इन्होंने ही तैयार किया। इस फिल्म के दो सुपरहिट गाने थे, एक तो एक तरीके से मैं कहूंगा कि नेशनल एंथम ही बन गया, मेरे देश की धरती सोना उगले।
2: मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
1: इस गाने के लिए मनोज कुमार ने इनसे कहा कि देखिए आप तो मुंबई के रहने वाले हैं लेकिन ये गाना हिंदुस्तान की संस्कृति दिखाएगा, आप कैसे बनाएंगे इस गाने को? इन्होंने कहा कि हम तो बना देंगे लेकिन इसे आपको गाँव में शूट करना पड़ेगा, सुबह शाम दोपहर सब वक्त शूट करना पड़ेगा। कल्याण जी भाई कहते हैं कि हमने तो जी जान से इस गाने को बना दिया लेकिन जिस तरीके से मनोज कुमार ने इसे शूट किया वो काबिले तारीफ है, चार चांद लगा दिए इस गाने में उन्होंने। कल्याण जी आनंद जी कहते हैं कि मनोज कुमार म्यूजिकल डायरेक्टर हैं, फिल्मों के गाने के बारे में बहुत सोचते हैं और हमें म्यूजिकल डायरेक्टर के साथ काम करने में बहुत मजा आता है। बहरहाल इस फिल्म के बाद कल्याण जी आनंद जी ने मनोज कुमार की पूरब और पश्चिम में भी म्यूजिक दिया। इस फिल्म का म्यूजिक भी कमाल का हिट हुआ। सिंगापुर, अभी इतनी सारी फिल्मों का जिक्र मैंने किया तो आप भी सोच रहे होंगे कि यार इतनी तारीफ कर रहे हो, कुछ तो सुनवा दो। तो लीजिए, आपके लिए पेश हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में बने ये बेहतरीन नगमे। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर समर के साथ रहिए, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त।

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई सामड़ो रे सामड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा, आईका ओ आईका, ओए जर्नल सिंह ओए जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: स्वागत आप सभी का एक बार फिर से रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। यह सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो नाउ ऑन द गो 24 घंटे सातों दिन अब आपके साथ। मैं हूं समर, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से, जहां आज हम बात कर रहे हैं कल्याण जी आनंद जी की, या यूं कहिए कि उन्हें जी रहे हैं। सिंगापुर अब तक यानी 1970 से पहले कल्याण जी आनंद जी के गानों की आवाज थे मुकेश, रफी साहब, महेंद्र कपूर और मन्ना डे। एक बार किशोर कुमार ने कल्याण जी से कहा कि यार आप मेरे लिए भी कुछ अच्छा सा गाना बनाओ, सब गा रहे हैं आपके लिए, मेरे लिए भी तो बनाओ प्लीज। तो कल्याण जी ने कहा, देखो किशोर भाई, सारे गामा पधनी सा ये साथ ही सो रहे, मैं क्या करूं, मैं कहां से बनाऊं, कुछ अलग बनाऊंगा तो बात बिगड़ जाएगी ना। किशोर दा तो भाई साहब बढ़ गए, बोले नहीं आप तो कोई म्यूजिक मेरे लायक बनाओ। तो फिर कल्याण जी ने कहा चलो ठीक है, सोचते हैं कुछ। और फिर 1970 में एक फिल्म आई राजेश खन्ना की सफर, जिसमें किशोर दा का गाया एक एक गाना सुपरहिट रहा।

कल्याण जी आनंद जी का ही म्यूजिक था इस फिल्म में। और फिर इसके बाद किशोर दा ने कल्याण जी आनंद जी के लिए लगभग 270 गाने गाए और सारे गाने सुपर हिट रहे, चाहे वो मुकद्दर का सिकंदर क्यों हो, चाहे ब्लैकमेल का गाना हो पल पल दिल के पास, चाहे कोरा कागज का मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, तमाम गाने सुपर हिट। एक नया सिंगर मिल गया था इस जोड़ी को। तो चलिए फिलहाल तो इनके कुछ और गाने सुन लेते हैं और मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, और ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि जब पहली बार इन्होंने देवानंद के लिए म्यूजिक दिया तो कैसे इन्होंने वो रीत ही बदल दी जो देवानंद के गानों में अब तक होती आ रही थी। ये रेडियो मसी 24/7 लाइव, डोंट फॉरगेट एंड कीप लिसनिंग लेजेंड्स फिर से विद समर।

जमा हो चकाचक फिर लो पान चबाए। आहा।

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome.
2: You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually, it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonder Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ.
8: लेडीज एंड जेंटलमैन, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर ये सफर है लेजेंड्स का सफर, जो एक बार फिर से तय कर रहे हैं आप समर के साथ. और आज हम बात कर रहे हैं कल्याण जी आनंद जी की. तो मैं आपको बताने वाला था कि किस तरह से कल्याण जी आनंद जी ने जब पहली बार देव साहब के लिए फिल्म जॉनी मेरा नाम में म्यूजिक दिया, तो म्यूजिक देने से पहले इनके दिमाग में आया कि हमें इस फिल्म का म्यूजिक कुछ अलग तरीके से करना चाहिए. देव साहब के गानों के शब्द जो अब तक लंबे लंबे सुरों में होते थे, कल्याण जी आनंद जी ने उन्हें छोटा कर दिया. और ये एक्सपेरिमेंट सफल भी रहा. देव साहब ने खुद इसकी तारीफ भी की.
9: नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, अरे मैं वो परवाना हूं, पत्थर को मोम कर दूं.
8: कल्याण जी आनंद जी के साथ जिसने भी एक बार काम किया, फिर बाद में उसने दूसरा म्यूजिक कंपोजर लिया ही नहीं, चाहे वो मनोज कुमार हो चाहे फिरोज खान हो. फिरोज खान की तो उन्होंने कुर्बानी और धर्मात्मा में म्यूजिक दिया जबरदस्त हिट रहा वो. और खास बात ये कि हर फिल्म का कम से कम एक गाना तो कल्ट क्लासिक बन गया, और बाद में कई फिल्मों में उसे इस्तेमाल भी किया गया.

0: करता हूँ, केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
1: नहीं।
0: थोड़ा भी नहीं?
1: नहीं।
0: झूठा भी नहीं?
1: नहीं नहीं नहीं।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, behno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
2: भाई की डन है मम्मा।
3: ड्यूटी
4: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
3: मैं उठता था।
1: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉइस, आपकी चॉइस।
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
2: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
3: वेलकम बैक, यू हैड रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो, नाउ ऑन द गो। सिंगापुर आज की आपकी और हमारी आखिरी मुलाकात है। आज हमने बात की संगीत की बेमिसाल जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में 1956 से 1994 तक बेहिसाब और बेहतरीन म्यूजिक दिया। हर बड़े डायरेक्टर एक्टर के साथ इन्होंने काम किया, और ऐसा काम किया जो आज तक याद किया जाता है। चाहे वो मुकद्दर का सिकंदर का ओ साथी रे हो, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, या फिर गोपी का सुख के सब साथी दुख में ना कोए। ये तो वो गाने हैं जो मुझे याद आ रहे हैं। आप लिस्ट बना लीजिए, हर एक गाने सुपरहिट है इनके। और इनकी एक सोच रही है, ये सोचते हैं कि अगर जैसे हमें मुकेश जी, रफी साहब, मन्ना डे जैसे मंझे हुए कलाकार मिले जिनसे काम करवाना हमारे लिए आसान रहा, तो क्यों ना हम ऐसे कलाकार तैयार करें जिनसे आने वाले म्यूजिक कंपोजर्स को ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। सिंगापुर इन्हीं के कंटेम्प्रेरी म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब इनके असिस्टेंट भी रहे। जब वो नए नए आए थे तो इनको असिस्ट करते थे। इनके अलावा अलका याग्निक, कुमार सानू, उदित नारायण, पंकज उधास, न जाने कितने ही कलाकारों ने इनसे काफी कुछ सीखा है। अच्छा, कल्याण जी भाई का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा कमाल का था। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो इन्होंने तबाक से कहा कि शादी एक च्युइंगम की तरह है। शुरू में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन फिर बाद में उसकी मिठास खत्म हो जाती है। बस फिर उसे चबाते रहो चबाते रहो, न उसको फेंक सकते हैं न उसको निगल सकते हैं। तो सिंगापुर आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको हमें जरूर बताइएगा हमारे फेसबुक पेज पर आकर। और जाते जाते वादा कीजिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। मोहब्बत बनकर किसी के दिल में बस जाएंगे, मुस्कान बनकर किसी के चेहरे पर सज जाएंगे, और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद करें। याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में। मेरा नाम है समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पे आपसे मिलता हूँ, मिलूंगा आपसे यहीं पर। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, टेक केयर।

ये क्या चल बना? ऐसा नहीं चलेगा, वो अभी तुम्हें आया है। हाँ वो भाई लोग, वो फिर से करने को क्या बोलते हैं?

0: बात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: रात अकेली है,
1: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
2: जोश में रहो।
3: जगाती है कयामत कोई।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: पैसा, अरे मनी मनी, लगता है अपना भी टाइम पास।

0: बंद है माँ
1: दो दस दस
2: रोटी क्यों

0: सताता है?
1: मैंने नहीं, इसने मुझे बेघर बनाया है।
0: बेघर बनाया है तो चल तू इसकी माफी मांग। बैठ।

0: लिसन, मैं पेरिस में अकेली हूँ।
1: नो
0: यार, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी?
1: आई डोंट नो।
0: देख, अकेली लड़की, अनजान शहर,
2: कुछ हो गया तो।
1: अच्छा देख, बेड एक ही है, शेयर करना पड़ेगा।

वेलकम है जी, अपना ही गराज है। ट्रक्का वाला गीत है जी।

0: की लगती है।
1: बोल पेट्रोल ते पवाए नहीं।
2: कोई गल नहीं, साड़ी गड्डी ते गुडवेल नाल चलती है।
3: जादू है नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।

0: शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7 live pe.
1: मैं सच्ची बता रही हूँ कि मैं तो वापस आ गई हूँ, लेकिन मेरी अंतरा आत्मा कहीं कोसामुई के उस विला में अभी भी बसी हुई है। I'm telling you. Hello, hi, welcome, good morning. Radio Masti 24/7, मस्ती का मंत्रा शुरू करने का हो चुका है टाइम। मैं हूँ आपकी अंतरा यहाँ पर आपके साथ। एंड ट्यूजडे मॉर्निंग है और कल रात को जब गई थी तो आपको बता के गई थी कि आज मेरा सबसे बड़ा किसी से सामने होने वाला, इनफैक्ट कल मेरा सामना हो चुका है, विच इज मेरे जिम ट्रेनर के साथ। बिकॉज आफ्टर दिस ऑफ कोर्स सुपर फन फिल्ड हॉलीडे, मेरी कैलोरीज भी जहां पे वेकेशन पे गई हुई थी, फर्क सिर्फ इतना था कि मैं वापस आ गई, वो मल्टीप्लाई होकर वापस आई है। एंड आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट वाज वेटिंग फॉर मी, सो आई एम अ फुल ग्रोन एडल्ट। ओके, फिर भी जिम जाते हुए कल वो जो फीलिंग थी, जैसे स्कूल में होमवर्क जब नहीं किया होता है एंड टीचर को आपको फेस करना पड़ता है इवेंचुअली, क्योंकि आपको अंदर पता होता है ना कि सी मेहनत इतनी की थी तो उसका गुस्सा भी जायज है कि मैम मतलब ये क्या, मतलब जस्ट बिकॉज यू वर ऑन वेकेशन, बट कि अच्छा खासा रूटीन बना दिया था और फिर वेकेशन में हमारा दिमाग और हमारा पेट दोनों कहता है कि अरे छोड़ो यार छुट्टी पे। सो वही हुआ जिसका डर था, डांट तो पड़ी, बट अच्छी बात यह है कि उतनी नहीं पड़ी, पनिशमेंट थोड़ी अलग मिली है। मेरे ट्रेनिंग सेशंस को ऑफिशियली क्रूअल मोड पे डाल दिया गया है। अंग अंग जो है जो इस हफ्ता दुखने वाला है और शुरुआत हो चुकी है उसकी, क्या ही बताऊं मैं। सो ये मेरा हाल आज सुबह का। बट यू नो व्हाट, समवेयर इट्स आल्सो फनी हाउ इवन एज एडल्ट्स, राइट, वी नो एग्जैक्टली व्हेन वी हैव गॉन ऑफ ट्रैक और या एंड फिर भी वी टेंड टू डू थिंग्स व्हेन वी हैव टू। चलो फिलहाल तो ये हो गई ये सारी बातें, काफी और बातें होगी, काफी सारी मस्ती होगी, अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे। लेट अस ऑल हैव अ गुड टाइम बिकॉज ट्यूसडे मॉर्निंग यही करना है हमको, दैट्स व्हाट वी आर सपोज टू डू, है ना। गुड मॉर्निंग सलमा, गुड मॉर्निंग सपना आंटी, एंड गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन हु हैव ट्यून्ड इन दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे अंत्रा।
4: गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी हाँ बिल्कुल, अंतरा यहाँ पर आपके साथ। 7:19 हो चुके हैं 19 मिनट और शुरू हो चुका है मस्ती का बंतरा। सीधा चलते हैं न्यूजीलैंड जहां से आ रही है खबर। देखिए, लॉट ऑफ places including Singapore, like हर कोई ये जो बच्चे हैं उनका स्क्रीन टाइम है और इन सब चीजों को लेकर काफी जो है सतर्क होते हुए जा रहे, which is a very good thing, but then still the debate remains कि कब तक इस चीज को और कितना जो है पीछे आप खींच सकते हैं। Well, New Zealand जो है like a lot of other countries as well is proposing a ban on social media for children under 16. Prime Minister Christopher Luxon jo hai उनकी तरफ से ये प्रपोजल आया कि अगर ये लॉ बनता है देन उधर भी न्यूजीलैंड में भी इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स को रीजनेबल स्टेप्स लेने होंगे टू मेक श्योर कि यूजर एक्चुअली 16 साल या उससे ऊपर है। नाउ अगेन द होल कॉन्वर्सेशन बिगिंस दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों या पेरेंट्स पर नहीं डाली जा रही है। प्लेटफॉर्म्स को एज वेरीफाई करनी होगी, विच इज अ वेरी वैलिड आस्क। ओके, यूजिंग थिंग्स लाइक एग्जिस्टिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन, डिजिटल IDs, फेशियल एज एस्टिमेशन जैसी टेक्नोलॉजीज, एंड अगर कंपनीज कंप्लाई नहीं करती देन पेनल्टीज कुड गो एज हाई एज 10% ऑफ देयर ग्लोबल रेवेन्यू। सो वेल, पेरेंट्स तो कह रहे हैं कि भाई अभी कर दो, लाइक हम तो परेशान हो चुके हैं अपने अपने बच्चों से, इतना ज्यादा स्क्रीन पे ये लोग, एंड देर होल टिकटॉक का वर्ल्ड एंड स्नैप स्ट्रीक करना है एंड ऑल दोज थिंग्स। या मैं, मेरे से तो दो ही नहीं संभल रहे हैं। ट्विटर में मैं घुस ही नहीं रही हूँ, और ये कई साल पहले की बात है जब मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे यही दोनों समझ में आ जाए। एंड इनफैक्ट कभी कभी मुझे लगता है फेसबुक और इंस्टाग्राम इसके भी मैंने सारे फीचर्स एक्सप्लोर नहीं कर रखे हैं। सो वेल, तो अगर मैं तीसरी जिम्मेदारी लेती हूँ तो मैं कैसे ही करूंगी, बट देन दैट इज अबाउट मी। द किड्स नाउ डेज अ वेरी वेरी डिफरेंट। सो वेल, सवाल यही है कि बैन कर देने से क्या बच्चे सोशल मीडिया से जेन्युइनली दे आर गोइंग टू गो अवे? दे विल फिगर आउट अ वे, we all know that, right? या फिर simply they'll become smarter. So इसीलिए न्यूजीलैंड में भी इस प्रपोजल पर अभी तक कोई अग्रीमेंट नहीं आई है। सो सोचा जा रहा है एंड ऐसा माना जा रहा है कि वेरी वेरी सून ये चीज बिल्कुल एक लॉ की तरह बिल्कुल सामने आ जाएगी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यही काम है मेरा, देश विदेश फ्रॉम एवरी सिंगल प्लेस आई एम गोना गेट यू ऑल द अपडेट्स एंड कीप यू पोस्टेड ऑन दैट। गुड मॉर्निंग, कमिंग अप नेक्स्ट इज नीति मोहन की आवाज फ्रॉम द मूवी हेट स्टोरी 3। इन्होंने भी अपना बनाने की कसम खाई है लेकिन अपने अंदाज में। गुड मॉर्निंग।

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: All right, 7:31 by the studio clock। चलिए चलते हैं सीधा सिंगापुर की सड़कों पर और जानते हैं क्या है ट्रैफिक का हाल इस वक्त। आपको मिलेगा हेवी ट्रैफिक ऑन PIE towards चांगी at Stevens Road exit। हेवी ट्रैफिक की खबर ऑन TPE towards PIE between Loyang Avenue and Passengers Drive 12। हेवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन PIE इस वक्त towards अगर आप जा रहे हैं तो us at AYEXL। So well, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। Coming up next is a very very nice song। It's from Once Upon a Time in Mumbai। A बड़े क्लाइमैक्स वाले सीन पे बैकग्राउंड में ये वाला गाना बज रहा होता है। It's a recreated version but it's quite nice। चलिए let's pump up some energy this Tuesday morning पे इस गाने के साथ।
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: श्रेया, जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
2: बाइकी तने मम्मा
3: ड्यूटी।
4: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
3: मैं उठता था।
1: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
0: योर वीकली मूड लिफ्ट मंत्रा, ओनली विद आरजे अंत्रा।
5: आपने अपनी देन एंड नाउ की फोटो भेजी कि नहीं भेजी? अगर नहीं भेजी है, देन यू मस्ट नो अबाउट इट, एंड यस, यू शुड पार्टिसिपेट। रेडियो मस्ती 24/7 में अंतरा आपके साथ, यहाँ पे चल रहा है मस्ती का मंत्रा। 7:39 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, एंड इट्स भाई 28 अगस्त, आज तो 25 हो गई है यार। यस, इट इज रक्षाबंधन एंड इट इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं दैट रक्षाबंधन इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि भाई बहन होना ही जरूरी है। आई थिंक वी ऑल बिलीव इन नाउ एट द पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई कोई भी सिबलिंग्स हो, चाहे वो आपके कजन्स हो, रियल भाई बहन हो, बहन बहन हो, रक्षाबंधन का मतलब बहुत सिंपल है। एक रक्षा का बंधन, एक धागा जो आप अपनी बहन को भी बांध सकते हो। इट इज ऑल अबाउट दैट इमोशन एंड द रिलेशनशिप, एंड यस, दैट इज व्हाट वी वांट टू चेरिश अलोंग विथ यू। तो हमने कहा कि भाई एक तो एक सारा ये जो फेस्टिवल और ये रक्षाबंधन और फिर गणपति भी आने वाला है, एंड इन सब चीजों के सम्मान के लिए, एंड जब आता है कि घर में कुछ होना चाहिए, बिकॉज यू नो दीज आर द थिंग्स वी आर काइंड ऑफ कैरिंग इट फॉरवर्ड फ्रॉम आवर पेरेंट्स, एंड वी आर काइंड ऑफ गिविंग इट टू द नेक्स्ट जनरेशन एज वेल। तो क्या करेंगे, ज्योति स्टोर्स एंड वन कैंबल लेन पे ज्योति स्टोर फ्लावर शॉप है, वहां पर जाएंगे और वहां से सारा सामान लेकर आएंगे। फॉर एनी थिंग, लाइक जस्ट नॉट बिकॉज इट इज रक्षाबंधन, आई एम नॉट सेइंग दैट दे हैव यू नो but it's a fact that they have the most variety of rakhis, and in fact online jaakar bhi aap usko check out kar sakte ho, jyoti.com.sg. if you log on to that, you can go and check it out. Along with that, there are a lot of beautiful Ganpati idols which are also available, and different sizes as well. Matlab mera hi man kar gaya ki is baar thoda sa agar bada size, but well, that is me. So well, aap भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, आप वन कैंबल लेन जाकर भी उनके स्टोर पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज पूजा के सामान एंड ऑल, देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल जो कि हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं एंड रिपेयर की चीजें होती है, ये सारी चीजें भी आप इस स्टोर पर जाकर यू कैन अवेल दोज फैसिलिटीज। बट मुझे बताने की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है, बिकॉज एवरीबडी हु एवर इज इन सिंगापुर नोज अबाउट ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप। वेल, तो हमने कहा इस रक्षाबंधन को थोड़ा सा और नॉस्टैल्जिक एंड स्पेशल बनाते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज गो हंट अपने गैलरी में, फोन के गैलरी में जाइए, अपने सिबलिंग के साथ अपनी बचपन की यानी कि देन उसकी एक फोटो निकालिए, और अपने सिबलिंग के साथ नाउ यानी कि हाल फिलहाल में जो है ली गई फोटो वो निकालिए, दोनों को हमें भेज दीजिए। लेट अस सेलिब्रेट रक्षाबंधन, रिमेम्बरिंग ऑल दोज अमेजिंग मोमेंट्स व्हिच वी हैव लिव्ड विद आवर सिबलिंग्स, है ना। इतनी अच्छी फीलिंग आएगी ना जब आप भेजोगे, और उसके बाद ऑफकोर्स थोड़ा बहुत स्टैंड चांस टू विन समथिंग, समथिंग मेरी जान होएगा होएगा, बट वेल, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप तो आपको करना पड़ेगा। सो इफ यू हैव नॉट सेंट योर देन एंड नाउ पिक्चर रक्षाबंधन स्पेशल दिस आज कल शाम को नहीं भेजा है तो अभी भेज दीजिए या फिर आज आज के दिन में भेज दीजिएगा फॉर श्योर. फिलहाल के लिए आतिफ असलम एंड माई कमिंग अप नेक्स्ट कह रहे फटाफट पोस्ट एंड निकला हीरो. मैं ऐसा लगा मेरी बात हो रही है बट गुड मॉर्निंग.

0: नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
1: क्या हुआ था 2 अक्टूबर को? भाई It is only Bollywood and it is only films like these जो हमें ये सिखा के गए भाई। 2 अक्टूबर को जो है एक फैमिली गई थी पंजी में और वो पाव भाजी खा के आई थी। भाई 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, ये तो अब सेकेंडरी टाइप का हो गया। But that is magic of cinema, right? Radio Masti 24/7 on Trump के साथ और यहाँ पे चल रहा है मस्ती का मंत्रा। भाई दृश्यम तो आपने देखी ही होगी, आई एम श्योर पार्ट वन भी देखी, पार्ट टू भी देखी होगी। स्पेशली इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ थ्रिलर मिस्ट्री मूवीज, देन डेफिनेटली दिस इज वन जॉनरा एंड दिस इज वन मूवी यू मस्ट वॉच। इन फैक्ट आई गॉट सो लाइक अमेज्ड कि After watching Drishyam 1, Ajay Devgan wali in Hindi, I actually went back and मैंने मोहनलाल वाली original जो Drishyam बनाई थी वो देखी। And then उसके बाद जब second part आई, so I watched the original one first, दूसरे language में, and then I watched the part. Now, अब जो है टीजर इसका आउट हो चुका है द कंक्लूडिंग पार्ट का, यानी कि दृश्यम 3 की बात कर रही हूँ। दृश्यम द कंक्लूजन, दैट्स व्हाट दे आर कॉलिंग इट। मेरा सच, मेरा सही, सिर्फ मेरी फैमिली है। भाई हैट्स ऑफ टू तब्बू एंड अजय देवगन फॉर पुलिंग दीज रोल्स ऑफ लाइक Like how? Okay. So well, that's what they are saying. Ki every eye seems to be telling a very, very different story. Lekin kaun sa sach hai? Ultimately, yahi to bilkul pata lagana hai. So Ajay Devgan is going to return us with Vijay Salgaonkar, and this time with Jaydeep Alhawat Sahab and Prakash Raj joining this powerful ensemble. It's going to be directed by Abhishek Pathak. Drishyam the conclusion. Guess karo kaun si date pe release hone wali? Of course, bhool hi nahi sakte hain. भाई आपने अगर हुक कोई ढूंढ लिया हो और उसमें सब लोग हुक्ड होके रखे हैं, आपको पता है जितना गांधी जयंती की चीजें जो है सोशल मीडिया पर 2 अक्टूबर को नहीं चलती, उससे ज्यादा दृश्यम का वो एक मीम फ्लोट करता है कि पता है ना 2 अक्टूबर को क्या हुआ था। सो वेल, क्वाइट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन एंड प्रीटी एक्साइटेड। मुझे जानना है कि अब क्या मिस्ट्री लेकर आने वाले हैं ये लोग, क्या होगा, किस तरफ जाएगा कहानी का रुख, जानेंगे 2 अक्टूबर को इस साल। गुड फॉर अस। रेडियो वसी 24/7, लेट्स गो। इतनी अच्छी बातें करने के बाद मुझे लगा थोड़ा सा रुख 90s की तरफ मोड़ दिया जाए, क्या कहते हो? आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग।